हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वचन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हां सारेंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तो हां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

तोहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहां सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तोहां सारे इए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

91.2 MHz पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, इनमें तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इतना सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ, पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: जैसे
1: क्या करना,
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम।
1: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान।

0: निशान बनती है।
1: अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
3: सुबह सुबह शुरू।
2: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
3: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
2: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
3: आके बोलता हूँ पक्का।
2: अप्पा अप्पा ये पेड़ की
3: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
2: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
2: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: Chelsea.
1: चौकन्ना
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली
6: हाँ?
7: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

दोस्तों एक शब्द है मोहब्बत, इसे करके देखिए, तड़प न जाओ तो कहना। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखिए, हार न जाओ तो कहना। एक शब्द है वफा, जमाने में नहीं मिलती कहीं, ढूंढ पाओ तो कहना। एक शब्द है आंसू, दिल में छुपा कर रखो, आपकी आंखों से ना निकल जाए तो कहना। एक शब्द है जुदाई, इसे सहकर तो देखो, आप टूट कर बिखर ना जाओ तो कहना। एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर तो देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन हरमशाला। जी दोस्तों, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में, गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी इंजॉय करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक नई शुरुआत, नई सुबह, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ बिल्कुल अच्छे होंगे ये उम्मीद करती हूँ, इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ। तो आज की हम बात करें तो दोस्तों, आज 24 मई 2026 का दिन, और खास करके छुट्टी वाला दिन, संडे को फंडे ना बनाया जाए तब भी क्या ही कहना, तो जरूर बनाइए। कैसे? अपनों के साथ एंजॉय करके। और धर्मशाला के लोगों के लिए बात करूं तो, वैसे भी आप सभी जानते हैं दोस्तों कि समय समय के हिसाब से एंटरटेनमेंट होना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और परेशानियों से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन छुटकारा तो मिल ही जाता है। भूल जाते हैं, चलो मान लिया कि भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, तो यही तो चाहते हैं हम। जी दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि मेलों का आगाज़ हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही रौनक लेकर आता है। तो सिद्धबाड़ी की हम बात करें तो सिद्धबाड़ी में भी एक मेला लगा हुआ है, आप सभी जानते हैं। अभी ज़्यादा लोग इसमें शाम के टाइम ही आते हैं, और सबसे ख़ास बात आप सभी को बता दूं कि ये मेला जब भी लगता है हर साल, मतलब जब भी ये शुरू होता है, तो बारिश के दस्तक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हवा और बारिश ज़रूर होती है, खैर प्रे करते हैं इस बार ना हो। बादल तो छाए हैं, लेकिन आई होप सो कि ना हो, है ना, घूमने वाले के लिए बेटर रहता है, बेहतर रहता है। तो दोस्तों ढेर सारी बातें तो अभी हम करने ही वाले हैं, लेकिन ढेर सारा एंजॉय भी हमारा इंतजार कर रहा है साथ ही साथ। तो आइए मनोरंजन की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप सभी इसी तरह से बने रहिए और एंजॉय करते रहिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा।

बसंत रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और सचमुच जब हम जिंदगी के हर पल को खास बनाते हैं तो बहारों की तरह जो है वो छा ही जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हर पल हमारी जिंदगी का बहुत ही कीमती है, उसकी वैल्यू हमें ज़रूर समझनी चाहिए। और आज का दिन तो बहुत ही खास है ना, संडे वाला दिन है तो बहुत कम समय मिलता है फैमिली के साथ बिताने का। तो ये छुट्टी वाले दिन जो होते हैं यही हमारे लिए खास होते हैं, जो सबके साथ बैठकर कुछ पल जो है और ज़्यादा यादगार बनाए जाएं और कुछ खास यादें जो है वो संजोई जाएं। क्योंकि दोस्तों, इंसानों का कोई भरोसा नहीं कब कौन साथ छोड़कर चला जाए, लेकिन यादें जो है वो हमेशा हमारी यादों की किताबों में कैद हो जाती हैं। और जब भी हमें किसी की याद आए तो उस किताब के पन्ने को पलट कर देखें तो एकदम से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चाहे कितनी भी परेशानी हमारे चेहरे पर क्यों ना हो।

तो आइए दोस्तों, इन्हीं यादों को और ज्यादा खास बनाने के लिए तो बातों की जरूरत है, ढेर सारी बातों की जरूरत है और खास खास जानकारियां भी आप सभी तक पहुंचाने की जरूरत है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों मौसम की ओर और जानते हैं मौसम की अपडेट। तो इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो दोस्तों लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय आप सभी तापमान को महसूस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जी दोस्तों। और आंखों देखा हाल अगर आप सभी को बताऊं तो बिल्कुल ऐसे बादल से छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब जैसे बारिश का आगाज जो है वो हो जाए। तो गर्मियों के मौसम में कहीं ना कहीं राहत ही मिलती है बारिश से, लेकिन इस बार देखा जाए तो ज़्यादा गर्मियाँ हुई भी नहीं है। एक दो दिन ही लोगों को ऐसे परेशानी पड़ गई थी कि अरे भाई दो ही दिन में इतनी गर्मी, अगर सोचिए अप्रैल से गर्मियां होती या मार्च मिड से गर्मियां होती तब क्या होता। जिस तरह से इन पिछले दो तीन दिनों से हमने गर्मी को महसूस किया है, अलर्ट से गुजरे हैं। खैर दोस्तों, ये तो है कुछ अपनी कही सुनी सी बातें, यानी कि अपनी आंखों देखी बातें, लेकिन सबसे खास बात मौसम विभाग का क्या कहना है वहीं से तो हमें पता चलता है ना कि आगे वाला समय, क्योंकि उसकी तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो मौसम विभाग के अनुसार ही हमें थोड़ा सा आगे की ओर चलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मौसम विभाग क्या कहना चाहता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मई माह के बीच हुई भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। शनिवार यानी कि पिछले कल की हम बात करें तो कई क्षेत्रों में हल्की से तेज बारिश देखने को मिली। वहीं मौसम में आए बदलाव से लोगों को भी चिलचिलाती गर्मी से आराम मिला है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतर स्थानों के अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चले गए हैं। वहीं 24 और 25 मई को प्रदेश में फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की है, जबकि 28 और 29 मई को एक बार फिर से मौसम बदलने और कई जगह बादल बरसने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये तो थी मौसम की अपडेट, लेकिन हमें हर समय अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो वैसे में मन करता है कि चलिए कहीं नदियों में नहाया जाए। बच्चों की बात करें खास करके, क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन भी है, आज तो खैर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो हम बिना घर पर बताए, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बिना घर पर बताए जो है वो निकल पड़ते हैं और नदियों में इंजॉय करते हैं, नहाते हैं दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी कई बार निकल जाते हैं। तो ऐसे में एकदम से जब मौसम बदल जाता है तो अब थोड़ा सा डर ये भी रहता है जब पानी का बहाव तेज होने लगता है धीरे धीरे, और कई बार बहुत से लोगों को जो है जान गंवानी पड़ती है। अलर्ट भी होता है लेकिन फिर भी हम अपनी मनमानी के चलते किसी की नहीं सुनते और ज़िंदगी से

हाथ धो बैठते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, खास करके अपनी फैमिली के साथ में लेकर चलते हुए, क्योंकि आज के दिन फैमिली का खास दिन है। ये छुट्टी वाला दिन, खास पल आप सभी के लिए अपने हैं। खैर, इस पे और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, इसकी बहुत वैल्यू है, करिए तभी तो समझ में आएगा। फिलहाल दोस्तों आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: दोस्तों, ये प्यारे प्यारे से गीतों का सफर इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और आप सभी जानते हैं कि अब समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए जानते हैं अपने आसपास देश विदेश की कुछ खास जानकारियां। उसके बाद फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।
1: पंचायत चुनावों के मद्देनजर किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 3 बजे थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 व तीसरे चरण के लिए 30 मई को मतदान होगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। IGMC शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 लाख रुपए तक खर्च आता है, जबकि IGMC में सिर्फ 30,000 रुपए में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। IGMC के सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द, कम रक्त स्त्राव होता है और बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। IGMC में अब तक 38 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, जिनमें कैंसर के 3 मरीज शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि IGMC में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है।
2: आपका कैंसर था, ये मरीज हमारे पास कुछ 1.5 महीने पहले आया था। कुछ एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई डॉक्टर भी नहीं मंगाया था। ज्यादातर बड़ी सर्जरी में नहीं तो हम पहले बाहर से डॉक्टर लगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में हेल्प ऑफ दी एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष की सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर यशपाल है जो हमारे ऑन्को सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर फहीम और डॉक्टर रूबी हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं, उसको लो एटीएल रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंत को काट के आपको शायद याद होगा कई बार पूरी बड़ी आंत और नीचे लेटरल के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़े आंत के कैंसर को। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंत का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लेटरल का रास्ता उसको जोड़ पाए।
1: कुल्लू जिला में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति में पंचायतीराज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: यूनियन का कहना है कि 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों में कई महिला वर्कर्स को देर रात तक भोजन तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और घर वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार उनसे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला किन्नौर व स्पीति क्षेत्र में मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी किन्नौर व स्पीति क्षेत्र एकांकियों द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत चुनावों के मद्देनजर संबंधित पंचायत क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
4: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम चरण के मतदान के लिए 24 मई शाम 3 बजे से 26 मई तक, दूसरे चरण के लिए 26 मई 3 बजे से 28 मई तक तथा तीसरे चरण के लिए 28 मई शाम 3 बजे से 30 मई तक संबंधित क्षेत्रों में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं जिला परिषद एवं पंचायत समिति मतगणना दिवस 31 मई को भी चयनित क्षेत्रों में सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 तथा आबकारी नीति 2026-27 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सॉफ्टवेयर हैं, जबकि अवसंरचना और अन्य सुविधाएं राष्ट्र के हार्डवेयर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युवा चिकित्सकों की विशेषज्ञता, नवाचार और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के बारे में श्री नड्डा ने कहा कि संस्थान ने एक मजबूत ब्रांड बनाया है। ये स्वास्थ्य सेवा में पेशेवर दक्षता, समझ और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि रोगियों की देखभाल को मजबूत करने के लिए 11 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। समारोह में 26,396 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय बोर्ड के डिप्लोमा और डॉक्टरेट की उपाधियां तथा फेलोशिप प्रदान की गई। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, आचार संहिता में कैबिनेट बुलाकर क्यों लिए फैसले, चुनाव आयोग ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। दैनिक जागरण के शब्द हैं, चुनाव आयोग का मुख्य सचिव को नोटिस, मंत्रिमंडल बैठक हुई तो क्या निर्णय लिए। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में रोबोटिक तकनीक से कैंसर मरीज की पहली सफल सर्जरी, IGMC शिमला ने रचा इतिहास। दिव्य हिमाचल की खबर है, हिमाचल की बेटी ने फतह किया एवरेस्ट, करसोग की रुचिका ठाकुर ने ITBP के महिला अभियान दल संग लहराया तिरंगा। हिमाचल दस्तक लिखता है, आज 3 बजे थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, मौसम के रंग सुबह धूप, शाम को बारिश, ओलों और बर्फबारी से 5 डिग्री तक गिरा पारा। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, आज से साफ रहेगा मौसम, 28 को करवट बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। IGMC शिमला में पहली बार हुई बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी। और पंचायत चुनावों के मद्देनजर किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

दोस्तों, सबके जीवन में थोड़ा सा सन्नाटा है, ये तो वक्त ने सभी को बांटा है। किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम, सबके जीवन में कुछ खुशियां और कुछ गम। खुशी और गम का तो जिंदगी में आना जाना है, वक्त को थोड़ा वक्त दो वो तो बदल ही जाना है। हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है, दिल की नई उम्मीदों ने उसे घेरा होता है, फिर से कुछ नया करने का हौसला आता है। जब तक इंसान उम्मीद न छोड़े वो कहाँ हारता है। कुछ वक्त से समझौता भी कर लेते हैं, कुछ का जिद्दी दिल मानता नहीं, वो तो वक्त से भी लड़ लेते हैं। मंजिल तक तो सपने पहुंच जाना है, किसी को वक्त लगेगा, किसी ने उसे जल्दी पाना है। फिर भी सबके जीवन में थोड़ा सा सन्नाटा है, जो वक्त ने सभी को थोड़ा थोड़ा सा जरूर बांटा है। जी दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी इन कुछ खास बातों के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस समय अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफ़र को डेली रूटीन के साथ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। और ख़ास करके दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि सिद्धबाड़ी में, तो आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि ये मेला कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि शायद बहुत कम लोग जानते हैं इस मेले के बारे में। तभी इतनी भीड़ जो है वो होती नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वैसे वैसे जो है लोग आते हैं, क्योंकि शाम के समय इतने प्यारे व्यू के साथ और मस्ती, क्या बात है ना दोस्तों। और आज तो वैसे भी छुट्टी है तो ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। और आपके गाँव का मेला है तो जोरावर स्टेडियम में ये मेला लगा हुआ है, तो बिल्कुल दोस्तों आइए और मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए, झूलिए और ज़िंदगी को थोड़ा सा यू टर्न दीजिए, क्योंकि ये परेशानियां तो जिंदगी से कभी जाएंगी ही नहीं। ये तो जिंदगी का पार्ट है, इनके बिना जिंदगी जिंदगी है ही नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ, ये तो कुछ जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, लेकिन इतिहास से जुड़ी बातें क्यों भला नजरअंदाज करते हो, थोड़ा उस पर भी नजर डालिए। बिल्कुल दोस्तों, तो आज के दिन यानी कि संडे का दिन है और 24 मई 2026 का दिन है। तो आज क्या कुछ खास है, याद है? नहीं है? कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोच कर देखिए कि क्या खास है। तो उन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए और उस गहराई को जानिए जहाँ रिश्तों की जो है डोर कहीं टूटती सी नजर आ रही है, जहाँ रिश्ते कहीं कमजोर से नजर आ रहे हैं। तो उन रिश्तों पे ही नजर दौड़ाने की बारी है आज के दिन, आज के इस खास कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, रुचिका जब भी आपके साथ जुड़ती है ना, तो रिश्तों पे या तो अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, क्योंकि रिश्ते नहीं है तो हम नहीं है, हमारे अपने हमारे साथ नहीं है तो शायद हम कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आप सोचिए, विचारिए कि आखिर क्या खास है, क्या खासियत है आज के दिन की, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आज के दिन को हमें मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है, या उस रिश्ते की अहमियत को समझाने के लिए प्रेरित करता है। तो जरूर सोचिए, तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, और शायद इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक से थोड़ा सा हिंट आपको मिल भी जाए, कुछ वर्डिंग इसमें जरूर होगी। तो जरूर सुनिए और सोचिए, तब तक एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, तो ये बहुत ही प्यारा सा एनर्जी से भरा हुआ ये मस्ती भरा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से और खास करके रुचिका की तरफ से। जी दोस्तों, तो अब तो आप सभी समझ ही चुके होंगे कि आज का दिन क्यों भला खास है हमारे लिए, या ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हमें आज के दिन याद दिलाता है कि उस रिश्ते को याद किया जाए, प्रेरित करता है। तो दोस्तों चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं दोस्तों भाई दिवस, ब्रदर्स डे जो है वो आज के दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक भाई का भाई से प्यार हो या बहन का भाई से या भाई का बहन से, ये रिश्ता बहुत ही अनमोल है और इस रिश्ते की अहमियत शायद ही शब्दों में बयां की जाए। खैर, रिश्ता हर कोई जो है अपनी अपनी जगह में बहुत खास अहमियत के साथ, खास जो है वैल्यू के साथ होता है, लेकिन आज के समय में जो हम पैसों की भाग दौड़ में इतना बिजी हो गए हैं, इतने स्वार्थ से घिर चुके हैं कि हर रिश्ते को हम नज़रअंदाज करते हैं। भाई भाई में जब तक कहते हैं कि शादी नहीं होती तब तक खूब सारा प्यार होता है, लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन वो प्यार झलकता है वो कभी कम नहीं होता। और जैसे ही माना कि शादी हो गई, फिर कहते हैं ना कि वो खींचा तनी वाली बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं कि यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताना है, आपको अपनी फैमिली नहीं दिखती है, ये वो सो। अब आप सभी को यही लग रहा होगा कि ये बातें तो नॉर्मल है। दोस्तों थोड़ा सा कहते ना, कोई भी रिश्ता है समझने की ज़रूरत है। जैसे एक वाइफ का अपने हस्बैंड, माना कि वो एक बहुत ही अलग सा है, लेकिन एक भाई का भाई से रिश्ता बचपन से जन्म से एक अनमोल सा रिश्ता है, तो वो हम क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ अपने आप को हम अहमियत क्यों देते हैं? खास करके महिलाओं की बात करूं, क्योंकि महिला तो एक बहुत बोलते हैं ना सहनशील होती हैं, तभी तो कहते हैं दोस्तों एक स्त्री जो है वो घर को बना भी सकती है और घर को बिगाड़ भी सकती है, इतनी ताकत एक स्त्री में होती है। तो वो चाहें तो वो घर को एक घर की तरह रहने दे सकती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कला कलेश, जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं छोटी छोटी बात को लेके, अगर भाई को कोई चीज़ लाकर दे दी और माना कि वाइफ को नहीं ला के दी, तो वाइफ शाम को बवाल कर देंगे कि भाई इनके लिए सबसे पहले और मुझे सबसे बाद में, ऐसा क्यों? अरे वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हैं। मतलब ये चीज़ हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, खास करके बीवियों की बात करें तो थोड़ा सा उन्हें भी समझना चाहिए कि जितना गहरा रिश्ता उनके साथ है उतना ही गहरा रिश्ता एक उनके पति का भाई के साथ है, बहन के साथ है, माँ के साथ है, पिता के साथ है। हर एक रिश्ते की अपनी एक अहमियत है, तो हम हर सभी रिश्तों को एक ही नज़रिए से मापने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे, हम अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आए हैं तो वो सिर्फ हम पे ध्यान दें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक कहते हैं ना, पुरुष को पूरे घर को बांध कर रखना है तो उन्हें हर एक चीज़ का ध्यान भी रखना होता है। ऐसा नहीं कि एक स्त्री अकेले जो है वो घर चलाने रखती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इक्वली जो है कॉपरेशन दोनों तरफ से हो तो शायद रिश्तों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, उन्हें निभाया जा सकता है। तो जब दोनों समझेंगे तो रिश्ते टूटने की बात नहीं आएगी, रिश्तों की जो हम नज़रअंदाजगी या अहमियत को कम समझते हैं वो शायद कहीं ना कहीं हमारे जहनों दिमाग में आ जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, ज़रूर इस पे बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन ही खास है भाई के लिए, तो ज़रूर आज के दिन अपने भाई को वो प्यार ज़रूर बताइए कि आपके दिल में अपने भाई के लिए कितना प्यार है और आप उनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में भाई से बढ़कर कुछ नहीं, एक दोस्त, एक भाई, एक पिता का, कई बार पिता का सहारा भी एक भाई के हाथों में होता है। तो हुआ ना ये कितना अनमोल रिश्ता, तो क्यों हम इसकी अहमियत को मापने लग जाते हैं, उसे अनदेखा करने लग जाते हैं।

सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत भाई भाई के प्यार को दर्शाता है। बिल्कुल दोस्तों, चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है। माँ को तो होता ही है, लेकिन भाई भाई का एक रिश्ता बोलते हैं ना, एक अलग ही वैल्यू के साथ, अलग ही खासियत के साथ जो है हमारी जिंदगी में होता है। उसी तरह से एक भाई और बहन का भी उसी तरह से है, क्योंकि भाई तो भाई है। भाई बहन के लिए एक पिता के समान जो है हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनकी रक्षा करते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दोस्तों भाई की जिंदगी से जुड़ी हैं। खास करके भाई बहन की हम बात करें तो इस रिश्ते की भी बहुत अहमियत है। और इस रिश्ते की अहमियत की बात हम करें तो बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हैं हमें अक्सर सामने आती हैं, ज़रूर उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना, हमारी जो ये सोच है यही हमें एक छोटा इंसान भी बना देती है तो एक बड़ा इंसान भी बना देती है। और यही सोच जो है हमारे एक बोलते हैं मतलब कि अच्छा भी बनाती है किसी के सामने, और बुरा भी यही बनाती है। तो देखते हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को समझा जा सकता है, या यूं कहें कि हमारी जिंदगी से जुड़ी जो एक डेली रूटीन के साथ जुड़ी कुछ खास बातें हैं, उन्हें भी अगर इन रिश्तों की अहमियत के साथ जोड़ा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शायद बचपना कहें या फिर नज़रअंदाजगी कहें, शायद हर कोई कर बैठता है। तो बिल्कुल जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ अब समय है एक छोटे से अंतराल का, और ये बहुत ही प्यारा सा गीत, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये एआई द्वारा क्रिएट किया गया गीत था। और सच में म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, और कई कवार जो है थोड़ा सा चेंज लाना और समय के साथ ढलना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, तो हम भी क्यों ना ढलें, हमारा रेडियो क्यों पीछे रहे। बिल्कुल दोस्तों, हमें भी समय के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन पुरानी यादों को, पुरानी बातों को साथ में लेकर चलते हुए। ऐसा नहीं कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नया अपना लें, क्योंकि जमाना है, जमाना तो बदल कर फिर वही आ जाएगा, क्योंकि समय है ना दोस्तों, समय का बिल्कुल पता नहीं है कि कब किस दौर पे जो है वो हमें पहुंचा दे। और जिस तरह से ये जो चल रहा है ना सिस्टम, कि युद्ध की तरह, युद्ध के कारण या फिर किसी भी वजह से चीज़ें सारी जो भी हमारी मतलब कि महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर घर बनाने के जो मटेरियल होता है उसकी हम बात करें, हर एक चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि जो अपनी प्राकृतिक चीज़ें हैं, खेती की ही बात करें तो जिसकी अहमियत कहीं ना कहीं हम दबा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे ऐसा ना हो कि लोग घर उखाड़ कर जो है वो ज़मीनें दोबारा से जो है खेती करना शुरू कर दें, क्योंकि अपनी जो एक कहते हैं ना खासियत इन्हीं से, किसानों की बात करें तो इसी से है, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और समय है एक छोटे से अंतराल का, क्योंकि बातचीत अभी बहुत सारी है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर से वापस आएंगे मनोरंजन के साथ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हूँ। बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। अभी बहुत सारी जानकारियां भी हैं जो कि आप सभी का इंतज़ार कर रही हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो इंतज़ार ख़त्म होगा और हर जानकारी जो ख़ास है वो आप सभी तक पहुंचेगी, और साथ ही साथ रुचिका की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें वो भी ज़रूर आप सभी तक पहुंचेंगी। तो दोस्तों, इस अंतराल से पहले मैंने बात कही थी कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि लोग घरों को उखाड़ कर जो है वो खेती करना शुरू कर दे। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ गया होगा कि ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों, ये इस बात की खासियत को या अहमियत को वो लोग अच्छे से जानते हैं जिन्हें कि आभास हो ही चुका होगा। खैर, अब तो हम मेहनत से थोड़ा टलते हैं, डरते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई ऑप्शन ना रहे तो फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। दोस्तों, हर किसी का जो है एक तरह से स्टेटस की ही बात करें या फाइनेंशियली ही हम बात करें तो एक जैसा तो नहीं होता है। कोई बहुत जो है सही, मतलब कि उच्च स्टेटस के हैं तो कुछ थोड़ा सा मिड के होंगे तो कुछ लो के होंगे। हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियां या हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी। तो उसी के चलते अब देखिए, धर्मशाला की बात करूं या कांगड़ा पूरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे लोगों को क्या आजकल ट्रेंड में है कि जो ज़मीनें बुज़ुर्गों द्वारा संजो कर रखी गई जो ज़मीनें हैं वो बेचने में लगे हुए हैं, सेल करने में लगे हुए हैं। और खुद पहले मैंने कहा था ना, पहले हर बार कहती हूँ कि पहले जो था एक ही घर में चाहे चार भाई हैं चाहे पांच भाई हैं एक घर में जो है वो एक उसमें गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब के समय में अगर पांच भाई हैं तो वो ज़मीन उनमें जो है डिवाइड होगी और उसी डिवाइड करती हुई ज़मीन में वो अपना अलग अलग से घर बनाएंगे। तो सोचिए, ज़मीनें कहाँ से बचेंगी, कहाँ खेती की जाएगी, कहाँ कैसे ज़िंदगी का गुजारा किया जाएगा। हर चीज़ को हम खरीदने पे बैठ गए हैं, एक छोटी सी मिर्ची से लेकर सब्जी से लेकर हर एक चीज़ को हम डिपेंड हो चुके हैं मार्केट पे। तो दोस्तों, फिर ये दिक्कतें बढ़ेंगी ही तो और क्या होगा। तो ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैंने जो कहा वो सच ही हो सकता है ना, आपको क्या लगता है दोस्तों? खैर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं तो सिर्फ एक जो दिमाग में बात आई मैं सिर्फ उसे आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से जो बुज़ुर्ग हैं ना वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और शायद समझते भी हैं कि जिस तरह से हमने मजाक बनाया है रिश्तों का कहें या फिर जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसे सहेजने का जो है सहेज कर ना रखने का मजाक, तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। शायद हो सकता है, सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं, बाकी तो खैर समय बताएगा कहां से कहां लेकर जाएगा और कहां नहीं लेकर जाएगा। फिलहाल आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका लेकर जाएगी आप सभी को एक प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

वाह रे हिंदू, तुम चुप रहो, हम गाएंगे।

तो दोस्तों इस बहुत ही प्यारे से गीत के साथ आप सभी मेरी एक एक बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और इस प्यारे से गीत में देखिए जो बातें थी वही इस गीत के जरिए आप सभी तक पहुंची। तभी तो कहते कि जो ये पुरानी यादें हैं जो पुराने गीत हैं ना उनके साथ जो है वो जिंदगी की कुछ असलियत जुड़ी होती है। तो तभी तो अपनी इस विरासत को ऐसे मिट्टी के मोल जो है वो मत बेचिए क्योंकि ये जो है हमारे लिए सोने के समान है। तो दोस्तों सोना आज की डेट में देखिए कितना महंगा हो चुका है कि लेना मुश्किल हो गया है, शादियों के लिए मुश्किल हो गई है कि इतना महंगा कैसे लें और बस हम मजाक बनाए जा रहे हैं हर बात का। खैर दोस्तों ये तो ज़िंदगी से जुड़ी हमारी डेली रूटीन से जुड़ी कुछ खास बातें, लेकिन इसी के साथ जो है कुछ खास जानकारियाँ भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा जो है ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक खास जानकारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को रिज पर एंटी चिट्टा एंड क्लीन एनवायरनमेंट अवेयरनेस मिनी मैराथन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। जी दोस्तों ये कार्यक्रम मिनी मैराथन 10 किलोमीटर ड्रीम रन 3 किलोमीटर रहेगी। रिज पर रिपोर्टिंग का समय 5 जून को सुबह 6 बजे और फ्लैग ऑफ सुबह 6:15 पे किया जाएगा। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे विशेषकर चिट्टे के खिलाफ जो है एकजुट करना, स्वच्छ पर्यावरण, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना है। हर वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश को नशा मुक्त समाज के अभियान से जोड़ा है। पुलिस विभाग का कहना है कि इस अभियान से युवाओं के भविष्य की सुरक्षा व समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सामूहिक प्रयास है। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस तथा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। जी दोस्तों तो किसी भी बात को हम अगर अपनी जिंदगी से ही जोड़कर देखें, इस न्यूज़ को इस जानकारी को भी हम अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही खास मैसेज जो है वो प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए युवाओं को, बच्चों को, बड़ों को, सभी के लिए है। लेकिन इस पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी आप सभी से, विचार जो है अपने रखना चाहूँगी। बाकी तो खैर आप सभी बहुत अच्छे से जानते, ज़रूर रखूँगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को एन्जॉय कराएंगे एक

दोस्तों, इस प्यारे से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। कहते हैं कि खुश रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा ना किसी की उपेक्षा, ये सोचकर हमेशा खुश रहा करो। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वो आपके परिश्रम का फल होगा। जीवन कर्म क्षेत्र है, जो भोगे वही प्राप्त होगा। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो। धैर्य की भी अपनी मर्यादा होती है। जहां स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े तो वो धैर्य नहीं कायरता कहलाता है। अच्छे जरूर बनिए, पर ये साबित करने में अपना समय ना गवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाइए, मंजिल खुद सामने आएगी। मोह के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो होती है मृत्यु, किंतु यदि प्राण रह जाए और मोह चला जाए तो वो होती है मुक्ति। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से उसकी उम्मीद कभी मत कीजिए। जी दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी ये प्यारी प्यारी सी बातें कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती हैं हमारी कुछ गलतियों से सबक लेने के लिए। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में तो बहुत ही खास बातचीत जो है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन ही खास है। ब्रदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी, तो भाई के प्रति आपके दिल में कितना प्यार है, कितनी जो है अपनापन है, वो बताने का समय है। उस रिश्ते की अहमियत को समझने का दिन है। तो खास साथ ही दोस्तों, एक बात जो कि जानकारी से जुड़ी हुई आप सभी के साथ साझा करना चाह रही थी, वो जरूर करूंगी, अभी करूंगी, बिल्कुल करूंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ये जो हम अभी बहुत ही खास कि नशा खत्म करने के लिए जो है 5 जून को दौड़ेगा हिमाचल, जो ये मैराथन है एक तरह से अवेयरनेस से जुड़ी है। तो एक बात यूं कहो या फिर एक सवाल कह सकते हैं कि जितना हम नशे को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं क्या हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। दोस्तों, पहले भी आप सभी से ये बात साझा की थी कि जो ये चुनावी समय चल रहा है, चुनावों का समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हम उसको बढ़ावा नहीं दे रहे। हम नशे के सहारे पे जो है अपनी एक जगह बना रहे हैं। हमें खुद पे विश्वास नहीं है, हमने अपनी इमेज उतनी साफ अपनी सोसाइटी के सामने नहीं बनाई कि हम सिर्फ जाकर कुछ बातें कहकर जो है उनसे वोट मांग सकें। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं जो है बड़े ही शुरुआत करेंगे, बच्चों के सामने ऐसी चीजें लेकर आएंगे तो नशा खत्म कैसे होगा? जब हम इन बातों पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम किसी पे ब्लेम जो है वो नहीं कर सकते। तो मैंने दोस्तों यही बात है कि जब हमारे घर के बाहर चीज़ें होती हैं या घर के मेंबर इन चीज़ों के अलावा, तो हम बहुत ऐसे मतलब उबाल या उसके साथ कहते हैं जुनून के साथ हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते। कोई दुकानदार से लड़ रहे हैं या उनको लोगों के साथ जो जिनके साथ आपके घर के मेंबर जाते हैं उनके साथ घर में करने के लिए पहुंच गए। तो इससे बेहतर है कि हम अपने घर पे थोड़ा सा माहौल उस तरह का क्रिएट करें कि ऐसी चीजें हमें फेस ही ना करनी पड़े। क्योंकि इंसान घर में जो है ना परेशान होकर कई बार ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक आप समझेंगे नहीं, अपनी मानसिक सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा।
चाहे हम जितनी भी कोशिश कर ले, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जो इंडिविजुअली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो कर्तव्य है, क्या हम उसे अच्छे से निभा पा रहे हैं, क्या उस पर हम काम कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है। तो ज़रूर सोचिए, विचारिए, और तब तक एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगा हर्ट्स पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन के साथ। खैर, डेली रूटीन नहीं है, संडे वाले दिन तो रूटीन सारी टूटी फूटी सी हो जाती है, क्योंकि कई बार तो उठने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि बस 8-9 बजे तक आराम से सोए रहें और उसके बाद कहीं जाकर कुछ काम करें, लेकिन घर की महिलाओं को वो छुट्टी भी नहीं होती है, क्योंकि खाना तो सभी ने खाना ही होता है, चाहे फिर वो संडे का दिन हो या मंडे का या ट्यूसडे। पूरे वीक की हम बात करें तो वो छुट्टी कभी नहीं आती, क्योंकि दो वक्त की रोटी के लिए ही तो हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं और खाए बिना तो हम रह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों कि घर की महिलाओं को आप एक दिन का ब्रेक ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो या तो सभी मिलकर खाना बनाएं, ऐसा भी हो सकता है कि सभी हेल्प करा दें और साथ में, कहते हैं ना कि सभी के साथ जो खाना बनाया जाता है उसमें प्यार भी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कहीं बाहर जाकर पूरी फैमिली जो है आप डिनर या लंच इंजॉय कर सकते हैं। और वैसे तो मैं बात कर ही रही हूँ कि आज सिद्धपाड़ी में मेला लगा हुआ है और आप ज़रूर मेले को भी इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जोरावर स्टेडियम में आप मेले का आनंद ज़रूर ले सकते हैं। शायद एक ही दिन का होता है, शायद ऐसा ही है कुछ, इसका पता नहीं चलता है कब लगता है कब ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाँ एक आज 24 है तो शायद आज ही होगा मे बी। तो ज़रूर आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि औरतें जो हैं वो, उनके पेट में कोई बात बचती नहीं या रुकती नहीं, बात नहीं रहती, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी औरत की चुप्पी को पढ़ा ही नहीं। जिनका ये कहना है, उनकी मुस्कान के पीछे दबी होती है अनगिनत तकलीफें, अधूरे सवाल और कई कड़वे सच, जो अगर जुबान तक आ जाएं तो रिश्तों से लेकर समाज तक बहुत कुछ बिखर सकता है। लेकिन हर बार औरत दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही आवाज़ को दफन कर देती है। बिल्कुल दोस्तों, ये कुछ शब्द हैं और ख़ास करके मैं एक ही लाइन को रिपीट करना चाहूँगी, और ये बहुत सी औरतें करती हैं कि वो दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देती हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट

दबा देती हैं, अपनी आवाज़ को दबा देती हैं, क्योंकि उन्हें खुद से पहले कई बार जो है वो दूसरों के बारे में सोचना होता है, फैमिली के बारे में सोचना, क्योंकि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती ना। अब आप यही कह रहे होंगे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि एक औरत जो है भाई भाई के रिश्ते को नहीं समझती या ये वो, लेकिन दोस्तों हर कोई एक जैसा हो, हर किसी के सोचने का तरीका एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोगों का सोचने का तरीका कुछ अलग सा होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए वो रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन ये बात जो है ना कि दूसरों की इज्जत को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में ना सोचना, ये वाकई में हमारी ज़िंदगी का कड़वा सा सच है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इसी गीत के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और हम बात कर रहे हैं आज के इस खास दिन पे भाई दिवस जो है आप सभी मना रहे हैं, तो भाई के प्यार की ही बात कर रहे हैं क्योंकि एक भाई का भाई से या बहन का भाई से या भाई का बहन से प्यार तो प्यार है ना दोस्तों। रिश्तों की अहमियत को समझना बेहद खास है, तो इसी पे जुड़ी एक बात मैं आप सभी से करना चाहूंगी, खास करके लड़कों के लिए, भाइयों के लिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जिनके घर में या तो बहन, तभी कहते कि घर में लड़की और लड़का भाई बहन होना बहुत ज़रूरी है ताकि लड़कों को ये समझ में आ सके कि लड़कियों से बात कैसे की जाती है, क्योंकि बहन से बात उन्हें भी सोच समझ कर करनी पड़ती है। तो बाहर फिर जिस तरह से वो अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह से वो बाहर दूसरी लड़कियों की भी रिस्पेक्ट कर सकें, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो डिफरेंस उन्हें समझ में नहीं आता है। तो कुछ लड़कों की मैं बात करूं दोस्तों, तो उनकी अगर अपनी रियल सिस्टर को कोई आंख उठाकर भी देख ले तो उनका खून जो है वो उबल जाता है, एक तरह से उबाल आ जाता है उसमें, यानी कि वो हाइपर हो जाते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं कि बस जिसने देखा है उसे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छी बात है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कई बार वही लड़के दूसरों की बहनों को जिस तरह से परेशान करते हैं या यूं कहें कि उनकी इज्जत पे जो है सवाल उठाते हैं या उनकी इज्जत को समाज में उछालते हैं, सबके सामने उनका नाम बदनाम करते हैं, तो क्या वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। रिश्ता सिर्फ आपका ही आपके परिवार से नहीं है, हर किसी का हर किसी से है, तो हम वो डिफरेंस क्यों भूल जाते हैं। दोस्तों ये एक दिन खास इसलिए होते हैं क्योंकि इस दिन की अहमियत को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो रिश्तों की अहमियत को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इनकी गहराइयों में न जाएं। जो ये क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जो ये गलत चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कहीं ना कहीं, तो इसी के चलते हम जब अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते। हम अपनी मानसिक सोच को किस तरह से बदल रहे हैं, उस पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं, सबसे खास बात तो ये है। हम बाहर कोई लड़की अगर दिख जाए या कोई लड़कियों का भी यही हाल है, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अब लड़कों के साथ जो है वो एक तरह से टाइम पास के लिए रिश्ते बना लेते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों या तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह की कितनी लिमिट तक हमें रहना है, या तो गलती से अगर उन्होंने किसी पे विश्वास करके उनके साथ आगे बढ़ भी गए हैं तो वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्यार का भी नाम दें तो प्यार सिर्फ स्वार्थ नहीं होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे को सहयोग करना, दुख हो चाहे सुख हो चाहे मुश्किल समय हो, चीज़ों को समझकर अगर हम आगे बढ़ें तो शायद बेहतर है। क्योंकि कई बार मैंने वही कहा ना कि औरतें चुप्पी साध लेती हैं दूसरों की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन जिस दिन वो चुप्पी टूटी तो औरत का वो प्रचंड रूप जो है वो सबसे भयानक होता है, तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कहीं ना कहीं लड़कियाँ अपनी जो है अपने आप को कम समझती हैं, मतलब कि अपनी जो है अपने आप को किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं हम, तो खुद पे कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है, लेकिन जिस दिन वो अपनी अंतरात्मा के ऊपर विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ जाए ना तो कोई मजाल नहीं है किसी की कि वो आंख उठाकर देखे। तो उनकी चुप्पी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और ना ही फ़ायदा उठाना चाहिए, ये बात हमेशा लड़कों को भी और लड़कियों को भी याद रखनी चाहिए। और ख़ास करके मैं भाइयों के लिए ये मैसेज दे रही थी, जिस तरह से आपकी अपनी बहन है उसी तरह से बाहर वाली लड़कियां भी दूसरों की बहनें ही हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, तो कभी भी गलत करने से पहले 100 बार सोचिए। जिस तरह से आपकी रिस्पेक्ट है अपनी सोसाइटी में, उनकी भी रिस्पेक्ट है, तो ऐसे सवाल उठाना या कीचड़ दूसरों के ऊपर फेंकना ये अच्छी बात नहीं होती है। एक कहते ना, इंसानियत होने के नाते हमें ये छोटी छोटी सी बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि बातें कुछ ज़्यादा गंभीर सी हो गई हैं, तो आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। और सचमुच भाई बहन का प्यार जो है वो सबसे अनमोल और सबसे अलग है। लेकिन हमें जिस तरह से अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं, वैसे ही हमारे से जुड़े लोगों के रिश्तों को भी हमें उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिसकी वजह से हम किसी की भी ज़िंदगी में एक बुरा सबक बनकर रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों ही बनना है कि कोई हमें सोचने पे भी जो है बुरा भला कहे या हमारे बारे में बुरा सोचे। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। ज़िंदगी में आए हैं और ज़िंदगी बहुत अनमोल है। ज़िंदगी छोटी छोटी बातों पे सबक सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को एक और जानकारी की ओर। दोस्तों, हिमाचल में बन सकते हैं नए जिले। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठित की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई। ये आयोग प्रदेश के उपमंडलों, विकास खंडों, तहसीलों और उप तहसीलों की सीमाओं और संख्या की व्यापक समीक्षा करेगा और इसी से नए जिलों का गठन का जो है वो रास्ता निकलेगा। इसी के साथ एक और खास जानकारी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। हिमाचल प्रदेश संघ देश भर में 9 दिनों के भीतर तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इस बार पेट्रोल पर 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें लागू होने के बाद राजधानी शिमला में पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गया। तो है ना दोस्तों, कितनी खास जानकारी आप सभी के लिए, शॉक वाली जानकारी। तो इसी जानकारी के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

जी दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ अब आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका का भी जाने का समय नजदीक आ चुका है। जी दोस्तों, बातों का ये सफर कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो ऐसा लग रहा था कि बैठी ही थी आप सभी के साथ बातें करने के लिए, लेकिन देखिए 2 घंटों का सफर ऐसे ही बीत गया। जब तक मन सवालों से भरा रहता है तब तक जीवन उलझन में लगता है, लेकिन जैसे ही भीतर मौन उतरता है हर उत्तर अपने आप मिलने लगता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं छिपे, वो तो उसी क्षण प्रकट होते हैं जब इंसान स्वयं से मिल लेता है। भीतर की शांति ही सबसे बड़ा मंदिर है। जी दोस्तों, तो आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और एक बार फिर से बता देती हूँ दोस्तों, सिद्धवाड़ी में मेला जरूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहाने होते हैं कुछ खास पल बनाने के, कुछ खास यादगार। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की इसी के साथ। और आप सभी एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर चला।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540

0: 40 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण, GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 张开呢
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना। ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है। ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे। बिल्कुल, चुनाव संवाद लेकर मैं हाजिर हूँ, और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। जी, आप सभी जानते हैं चुनावी बेला है, और इस चुनावी माहौल में जो है वो हर रोज नए चेहरे जो है वो हम आपको बता रहे हैं, नए शख्स से हम आपको मिला रहे हैं श्रोतों। तो बिल्कुल, आज के इस कार्यक्रम में चुनाव संवाद में हमारे साथ है संतोष, श्रीपति संतोष कुमारी जी। जी बिल्कुल मैम, बरसों से जो है वो काम कर रहे हैं फील्ड पर, सोशल वर्कर हैं, और बहुत से ऐसे सोशल काम इन्होंने किए हैं जो आज हम रेडी गुंजन धर्मशाला में सुनेंगे। जी बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आपका वेड़ी गुंजन धर्मशाला में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
1: धन्यवाद सर, और मैं शुक्रिया करती हूँ सबसे पहले गुंजन रेडियो केंद्र का, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके और अपनी बात को रख सकूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कोई 96 से कार्य कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत सारी महिलाओं को भी, जो भी मेरे से बनता है तो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, और काफ़ी बेनिफिट दिए, जैसे कि मैं खुद ट्रेनिंग दी है उनको, फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी है, नीटिंग की दी है, और कहीं पर तो हमने सोल बनाने की ट्रेनिंग भी रखी है, जिसमें कि SC ST कॉर्पोरेशन से उनको काफ़ी अच्छे मतलब बेनिफिट मिलते थे, जिसमें फ्री में हमने सिलाई दी सिलाई वालों को, और जो सॉल बनाते थे उनको खड्डी भी दी है। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आज हमारे को मौका मिल रहा है एक योल में पंचायत बनाने का, तो इसके लिए मेरी जनता से पूरी उम्मीद है हमारे टीका स्टेट से कि वो मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो पहले हमने काफ़ी मतलब परेशानियाँ उठाई कंटोनमेंट के टाइम पे, परेशानियाँ ये थी कि हमें कभी भी कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता था। जब हम जाते थे धर्मशाला में प्रशासन के पास तो वो बोलते थे कि कंटोनमेंट एरिया और हम इसलिए आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम ब्लॉक में भी जाते थे तो हमारा कभी ना महिला रजिस्टर है उस पर कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया, कि लड़कियां जो सामान बनाती है ये हम DRD से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता था, फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते थे इस चीज के लिए। मैं कि आज हमें मौका मिला है जनता के सामने अपनी बात रखने का, तो हम ये चीजें आपके सामने लाए हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि टीका स्टेट में जो भी हमारी नई पंचायत बनने का मौका मिला है तो उसमें प्रधान पद के लिए मैं कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे उम्मीद है, अपनी जनता से पूरी उम्मीद है, और मैं प्रधान बनती हूँ। तो मैं ये देखा कि हमारी सड़कें बहुत टूटी हुई है, जिससे कि हर किसी को बड़ी परेशानी हो रही है, वाहन जो जाते हैं उनको तो है ही परेशानी, जो पैदल चलने वाला इंसान है उसके लिए भी बहुत परेशानी है। दूसरी है कि हमारी गलियां पूरी अंधेरी पड़ी हुई है, किसी में लाइट नहीं है, लाइट का तो कोई बिल्कुल है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। अगर 8 बज जाते हैं तो लगता है कि आगे कोई घर नहीं है, ये अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, इसकी परेशानी भी है, तो इसके और भी हमने ज्यादा ध्यान देना है। तीसरी बात आई है कि हमारा जो कचरा है, आज महिलाएं इतनी परेशान हैं, घर में जो कचरा निकलता है सूखा तो कुछ जला भी लेते हैं, लेकिन गीले कचरे के लिए कोई भी हमारे पास जगह नहीं है, और हम बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी देखते हैं गली में थोड़ी जगह खाली है, रात को जाते हैं वहाँ फेंक आते हैं, जिससे कि वो हमारा ही वहाँ का पूरा

0: वातावरण खराब हो रहा है, जिससे कि हमारा परिवहन भी खराब हो रहा है, उसे अगर पानी कहीं से जा रहा है तो वो भी दूषित होके जा रहा है,
1: दूषित होके जा रहा है। चलिए जी, बिल्कुल श्रोताओं आपने जान लिया होगा, संतोष कुमारी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि वार्ड नंबर 4 से जो है वो नाता रखती हैं, योल पंचायत से नाता रखती हैं और प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो इन्होंने बताए हैं अपने काम, इस तरह से ये काम करेंगी। लेकिन आइए, आप सभी बने हुए वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, तो सबसे पहले आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं चुनाव संवाद। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का चुनाव संवाद में इस कड़ी में। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं। और आज हमारे साथ संतोष कुमारी जी जुड़ी हुई है जो

0: जिसके लिए मतलब ग्राम सभा बनाने के लिए संघर्ष समिति थी वो, ठीक है, ग्राम
1: जी
0: सभा
1: जी
0: संघर्ष समिति, उसकी एक मेंबर में मैं भी रही हूँ। जहाँ की जब जब भी हमें मौका मिलता था तो हम उनका सहयोग करते थे, और उन्होंने काफी मतलब के लिए हाई कोर्ट तक गए हैं और 18 साल तक ये लड़ाई लड़के, तो आज ये मौका आया हमें पंचायत बनने का, हमारा टाइम आया और 2023 में कैंटोनमेंट खत्म हो गया। और उसके बीच में जब हमें 3 साल यहाँ पे जोड़ दिया रक्कड़ में, जो भी पंचायत जहाँ जहाँ नजदीक लगी, टीका बनी चली गई तंगलोटी में और लेसर चला गया सिद्धवाड़ी में और टीका देट गया रक्कड़ में, ठीक है। इसमें जो हमारी ग्राम सभा संघर्ष समिति बनी थी उन्होंने बहुत योगदान किया। आज उन्हीं की बदौलत आज हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी ही लड़ाई और उनके संघर्ष ने आज हमको मौका दिया पंचायत में प्रधान बनने के लिए। हम भी इस चीज के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, संघर्ष समिति का।
1: बिल्कुल, चलिए धन्यवाद है। और टीका चतेड़, आप बता रहे हैं टीका चतेड़ जो है वो रक्कड़ में मर्ज हुई थी।
0: जी
1: अच्छा, चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 MHz पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम चुनाव संवाद आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आज की हमारी मेहमान हैं संतोष कुमारी जी जो कि प्रधान पद के लिए नियुक्त हुई हैं और उम्मीदवार हैं। तो आइए चलते हैं। तो संतोष जी क्या देखती हैं आपकी, अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो आप किस तरह की डेवलपमेंट जो है वो टीका चतैड़ में करना चाहती है, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका जो है मैं कहना चाहता हूँ टीका चतैड़ है, क्योंकि बरसों से जो है वो यहाँ पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि प्रतिनिधि कोई नहीं था तो काम कैसे हो सकता है। तो किस तरह का आप बदलाव जो है वो करना चाहेंगी?
1: मैं चाहती हूँ अगर मेरे को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं प्रधान बनती हूँ, तो मुझे पूरा ध्यान अपने युवाओं पे, अपनी महिलाओं पे और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सब के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। और साथ में मैं एक कमेटी होल का भी मेरे अंदर दिमाग में ये चल रहा है कि वो जरूरी होना चाहिए, जिसमें कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे कंप्यूटर करके बाहर जा रहे हैं उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम एक कमेटी होल बना के जिसमें 3-4 कंप्यूटर सेंटर मतलब कंप्यूटर लगा के वो सेंटर के रूप में आए, जहाँ पे कि हम छोटे बच्चों को भी मतलब इस चीज की ट्रेनिंग दे, उस बच्चे की भी कुछ इनकम बन जाए और पंचायत को भी थोड़ा सा फायदा आ जाए। क्योंकि ना अगर हम कमेटी हॉल अपना सरकार से ऐसा लेके बना लेंगे पंचायत, तो वो हमारा अपना रहेगा और जिसमें कि और भी कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे महिलाएं अगर हम लोग को ट्रेनिंग लाएंगे हम तो उसमें 2-2 घंटे का टाइम देंगे हम हर किसी को, और एक लाइब्रेरी भी चाहते हैं कि जो लाइब्रेरी बनाई जाए जिसमें कि बच्चे अपने जनरल नॉलेज के लिए वहां पर कुछ बुकें आएंगी जिसको कि बच्चे पढ़ेंगे एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि वो आगे जाके कंपटीशन है, कंपटीशन का जमाना है कि आगे अगर कई बच्चे जैसे हमारे यहाँ से चमुंडा के पास से बड़ोई से एक हमारा बेटा है जो कि वहां पे इसरो में है साइंटिस्ट है, तो हम चाहते हैं कि अगर वो जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ेंगे उन्हें पता चलेगा इसरो क्या चीज है, अंतरिक्ष में कैसे काम होता है।

0: सारी चीजें मैं इनको चाहती हूँ, मेरे जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे।
1: इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं
0: हाँ
1: आप?
0: बिल्कुल। और एक मेन चीज है कि मेरा टीकस देर स्लेव गोदाम तक है।
1: बिल्कुल।
0: स्लेव गोदाम में हमारी कुछ घर हैं 400 के करीब, जो कि सम्राट जमीन में है, जो कहा जा रहा है कि सम्राट ये फिर जंगलाती जमीन है, वन विभाग की है। फरवरी में, जस्ट फरवरी में 19 तारीख को उनके हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुए थे कि इनको तोड़ दिया जाए, लेकिन वो तो रह रहे कि आजादी से पहले से रह रहे हैं। तो उनके और भी मैं सरकार का ध्यान लाना चाहूंगी कि अगर वो वहां रह रहे तो उनको बेघर ना किया जाए, और वहां पे कोई भी मतलब ऐसा कामकाज भी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग नीचे आते हैं योल में काम करने के लिए, और ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं।
1: हाँ बिल्कुल। कुछ
0: ठीक
1: लोग
0: है,
1: योल में आते हैं, कुछ खनियारा, धर्मशाला, इन
0: हाँ
1: क्षेत्रों
0: इधर
1: में
0: जाते
1: बटे
0: हैं
1: हुए
0: इस
1: हैं। तो
0: उनके
1: अगर आप
0: लिए।
1: जीत कर आती हैं तो आप उनकी साइड से क्या समाधान उनका करना चाहती हैं?
0: उनका समाधान करूंगी कि सबसे पहले तो उनकी जो जमीन है वो नियमित हो जाए।
1: अच्छा।
0: ठीक है, और जब नियमित हो जाएंगी तो उनको एक भरोसा आ जाएगा कि ये काम हुआ है हमारा,
1: हुआ
0: है
1: है।
0: ना। तो वो भी निश्चित हो जाएंगे। आज वो इस उसमें जी रहे हैं डर में कि कब हमारे घरों के
1: ऑर्डर आ
0: पे बल्डोजर आ जाएगा,
1: जाएगा।
0: ना। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जनता इस चीज पे गौर करे, और हम सारे मिलके इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे तो ही ये काम हो पाएगा।
1: बिल्कुल 101 प्रतिशत। चलिए श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम में यूं ही बातचीत चलेगी क्योंकि बातचीत का ही माहौल है, चुनावी माहौल है। लेकिन फिलहाल हम आपको सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत आपके अपने रेडियो सेट पर।

0: रेडिगुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है कार्यक्रम, आप सभी सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए कार्यक्रम का नाम आप बाखूबी जानते हैं, चुनाव संवाद कार्यक्रम का नाम है। और आज इस कार्यक्रम में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं संतोष कुमारी जी, जो कि अयोल टीका चतहड़ की निवासी हैं, वहां से ताल्लुक रखती हैं, रिश्ता रखती हैं। बहुत सी बातें जो है वो संतोष कुमारी जी ने कही हैं, क्योंकि ये सोशल वर्कर भी रह चुकी हैं। चलिए संतोष कुमारी जी, ये बताइए कि जब आप इस फील्ड में, सोशल वर्किंग की फील्ड में, आपने कब पहला कदम रखा और किससे प्रेरणा आपने ली?
1: मैंने जब पहला कदम रखा तो सबसे पहले तो मैंने ना चिन्मय तपोवन का धन्यवाद करूंगी, डॉक्टर सुमा मैत्री जी, जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी थी। उनके माध्यम से मैंने ट्रेनिंग करी, 2 साल की फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग थी वो, और वहीं मैंने काफी कुछ सीखा। और उसके बाद मैंने 98 में अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया, जिसमें कि मैंने बहुत सारी अपनी महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे कार्य किए, और इसमें नीटिंग की थी, जिसमें सॉल बनाने की भी थी, जिसमें कि हमें मतलब फ्री में फिर मशीनें भी उनको दिलाई है। तो ये सारे कार्यक्रम रहे, और हमने जितना भी सरकार से मतलब कंटोनमेंट एरिया होने से हम बहुत सारे कार्य से वंचित रहते थे। जैसे कई बार हमें DRD का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था कि हम कंटोनमेंट में है, और ब्लॉक हमारा कोई बनता ही नहीं था। तो इसलिए अब ये लड़ाई हमारी खत्म हुई है, तो हम चाहते कि पंचायत का प्रधान बन गई मैं, तो ये सारी चीजें फिर हम दोबारा से इसको लाएंगे और सबको इसका लाभ दिलाएंगे।
0: चलिए श्रोताओ, आप सभी वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ बने हुए हैं, जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं, तो लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 MHz पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला है और कार्यक्रम चुनाव संवाद इस समय चल रहा है आप सभी के वीडियो सेट पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी गेस्ट संतोष कुमारी जी के साथ आपको फिर से रूबरू करवाते हैं। तो संतोष जी, किस तरह से देखती हैं आप, अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या आपके टिकट चतहर में हेल्थ से रिलेटेड कुछ डिस्पेंसरीज हैं या फिर कुछ छोटी मोटी, जैसे हर गांव में आपने देखा होगा कि डिस्पेंसरी तो होती है, छोटा मोटा क्लिनिक तो होता ही है, लेकिन टीका चतर में जहां तक मैंने स्टडी किया नहीं है।
1: ऐसा है कि ये चीज हमने पहले से, मैंने ये बना के रखा हुआ अपना व्यू। अब हमारी पंचायत बनेगी और मैं प्रधान के पद पे आती हूँ, तो हमने एक छोटी सी डिस्पेंसरी जिसमें कि मतलब कई बार गर्भवती महिलाएं होती है जो उनको अपना सारा ट्रीटमेंट करने के लिए ये तो धर्मशाला जाना पड़ता है। यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं आसपास, दाढ़ी में जाके कोई डिस्पेंसरी आती है, बाकी योल टीका स्टेट में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। तो ये भी हमारे एक वो विषय है कि हम यहाँ पर भी एक डिस्पेंसरी लाए। और एक चीज और है, डिस्पेंसरी के साथ साथ हम एक पशु चिकित्सा भी चाहते हैं,
0: जो कि बहुत मेन है,
1: बहुत ज्यादा मेन है
0: जी।
1: और जो हमारे खेती बाड़ी करने वाले ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके लिए भी मतलब

0: है, अपनी जो देसी खादें होती, जैसे पहले होता था, तो उससे तंदुरुस्ती रहती है। आजकल बहुत सारी बच्चे बच्चे को शुगर है, शुगर तो बहुत आम चीज हो गई
1: आम
0: है
1: चीज
0: कि
1: है।
0: ना हर किसी को, वो सिर्फ हमारे खाने की वजह से हो रहा है कि इसमें कुछ कमियां हैं। तो हम चाहेंगे कि इनको खाद की तरफ, अच्छे खाद जैसे कि जीविका है, ये कोई और खाद है जो कि हमारे गोबर से बन जाती है, कि केंचुए को डालेंगे उससे होगी ये चीजें, और अच्छे बीज लाने की भी कोशिश करेंगे जिससे कि अच्छा बीज पड़ेगा तो फसल अच्छी आएगी।
1: क्या बात है। चलिए श्रोताओ, आप सभी बने हुए इस समय आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और लेके चलेंगे आप सभी को एक और खूबसूरत से गीत की ओर।

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो गुंजन धर्मशाला है। चुनाव संवाद कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट है उनके साथ आपको रूबरू करवाते हैं। संतोष कुमारी जी के साथ आप बखूबी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन इनका विजन जो है वो हम जान रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। बल्कि हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करने का जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है, वो यही है कि जो भी प्रतिनिधि खड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्र के,

0: उनका आपकी पंचायत को लेकर आखिरकार विजन कैसा है? विजन क्लियर है? पर अगर हम बात करें, जितने भी हमारे पास अभी तक प्रतिनिधि आए हैं, सभी का विजन जो है वो क्लियर नजर आ रहा है, जिसमें से संतोष कुमारी जी भी हैं। इनका विजन जो है टीका चितैड़ को लेकर काफी ज्यादा क्लियर जो है वो नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं तो संतोष जी, टीका चितैड़ की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं, इवन की आप आर्मी एरिया से अटैच है तो वहां पर आर्मी पर्सन भी बहुत ज्यादा है, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा है, आपके खुद के गाँव के बच्चे भी बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से देखती है? क्योंकि एक पार्क है वो भी मुझे लगता है कुछ शरारती तत्वों के कारण उस पार्क को जो है वो तोड़ा फोड़ा भी गया है। पहली बात तो ये कि कहाँ आप अगर पार्क बनाती हैं तो कहाँ बनाएगी, और दूसरी बात उसकी सुरक्षा कैसे करेंगी फिर, क्योंकि पार्क तो पहले भी बना था,
1: हाँ
0: उसकी
1: जी,
0: तोड़ फोड़ हुई
1: लेकिन
0: है।
1: ऐसा है ना
0: जी
1: सर, अगर ये में पार्क जरूरी है बच्चों के लिए, और ये पार्क ना हमारे गांव के मध्यम में रहना चाहिए, जिसमें कि लेडी से अपने बच्चों को ले जाए घुमाए और वहां बैठे। कई बार मतलब क्या होता है कि इंसान घर में बैठा बैठा बोर होता है तो वो सोचता है कि पार्क में चले जाए और ठंडी हवा भी ले और बच्चों को कुछ खेलने के लिए मिल जाए। उस पार्क को हमें संभालने के लिए पहले तो पूरी बाउंड्री लगानी पड़ेगी, जिसमें कि छोटी बाउंड्री है जिसके अंदर कोई भी चीज लगी होगी, अच्छा घास लगा होगा, जिसमें सुबेरे मॉर्निंग वॉक करेंगे तो उसमें घूमेंगे, नंगे पैर घूमेंगे,
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: ना उससे क्या होगा कि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और बच्चों को भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना ही। और पार्क में मतलब ऐसा है कि कई बार घर में इंसान बैठा बैठा बोर हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं पार्क में जाके बैठूं, लेकिन हमारे पास ना पार्क की सुविधा ऐसी है। एक पार्क है वो बहुत ऊपर जाके, कई बार लोग इतना ऊपर चढ़ाई में चढ़ने की वजह से वो फिर यहीं कहीं बैठते हैं, यहाँ तक कि रोड के किनारे कोई भी ऐसा नहीं बना हुआ, कहीं पे बेंच नहीं है जहाँ पर इंसान बैठ जाए। ये भी हम लोग इतनी चढ़ाई चढ़ के जा रहे हैं ऊपर, यह पेयजल नहीं है कहीं पर भी जिसमें कि मतलब कुछ बनाया जाए जहाँ से, और वो स्वच्छ रहे पानी, जिससे कि जाने वाला इंसान हर कोई वहां पे पानी पिए और आगे जाए तो वो भी ये कहेगा कि किसी ने कोई काम किया है।
0: सही बात है। चलिए जी, पार्क का विजन आपने क्लियर जो है वो कर दिया है, लेकिन आइए श्रोता हम जानते हैं संतोष कुमार जी से कि लाइब्रेरी को लेकर जो है वो किस तरह का विजन रहता है, क्योंकि युवा जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई भी करना चाहता है। चलिए कंप्यूटर कोर्स तो अब वो अपनी जगह कर लेगा, लेकिन आफ्टर
1: लाइब्रेरी का
0: प्लस टू
1: होना
0: भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो
0: जी
1: इसलिए लाइब्रेरी भी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या है हमारे मोबाइलों ने तो आंखें खराब कर दी है बच्चों की, ठीक है, और उससे इतना ये नहीं होता जितना इंसान ना मतलब जनरल नॉलेज बुक से पढ़ेगा उसको ज्यादा उसकी स्टडी होती है। अगर जनरल नॉलेज के अगर बच्चा यहाँ से कंपटीशन में बाहर जाता है तो हमारा हिमाचल में क्या होता है कि अगर हम बाहर बच्चों को ले जाते हैं तो वो वैसे ही घबरा जाता है। तो हम ये चाहेंगे लाइब्रेरी में अच्छी बुकें आए, जनरल नॉलेज की आए और सारी चीज वो दिखाई जाए, जैसे कि ये आजकल इसरो में हमारे यहाँ से बड़ोई से भी लड़का है हमारा
0: जी
1: बच्चा जो
0: जी
1: गया
0: जी
1: साइंसिस से, जो कि अभी चंद्रयान जब गए थे तो उसमें भी वो हिस्सा रहे, तो हम चाहते हैं कि और भी बच्चे इसी तरह स्टडी करें। और कई बार हमारे यहाँ पर कोई इतना इनकम का साधन नहीं है, कुछ बच्चे अपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे और फिर माँ बाप ये कर नहीं पाते कि उनको कोचिंग में भेज दे या कुछ है। लाइब्रेरी में अच्छी बुकें होंगी तो बच्चा अपनी तैयारी यहीं पर बैठ के कर लेगा, और इससे कि उसके माँ बाप को भी एक तसल्ली मिलेगी कि उनका बच्चा कहीं सिलेक्ट हुआ और उसे नॉलेज है इस चीज का। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लाइब्रेरी भी जरूर बनाएंगे हम, इसकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात माँ बाप को ये कंफर्ट होगा कि लाइब्रेरी उनके अपने गांव में है, घर के पास है, सुबह कब गया बच्चा कब आया, अब वो
1: ये
0: सारी
1: टेंशन
0: चीज़ें
1: नहीं है,
0: उनकी
1: ये नहीं,
0: हाँ
1: इनको टेंशन
0: टेंशन
1: नहीं
0: नहीं
1: होगी।
0: होंगी, नज़र
1: हम
0: के
1: यही
0: सामने
1: चाहते हैं
0: रहेंगी।
1: कि हमें मतलब इस चीज के लिए भी ये देखना है कि हमारे बिल्कुल गांव के मध्य में ऐसी लाइब्रेरी हो कि ना जहाँ पे ना ऊपर से आने वाले को भी ना तकलीफ हो
0: ना
1: ना
0: नीचे
1: नीचे
0: से
1: से
0: जाने
1: जाने वाले
0: वाले
1: को
0: को भी।
1: तकलीफ हो। और एक चीज और मेरे गांव में बड़ी दिक्कत कर रही है, मतलब हर घर में तो गाड़ी है, लेकिन क्या है कि हमारे छोटे छोटे सी चौक हैं जिसमें कि दो गाड़ी खड़ी होती और जगह खत्म हो जाती
0: खत्म हो
1: और एक
0: जाते
1: दूसरे से मतभेद हो जाते इसी बात को लेके, तो हम चाहते कि एक पार्किंग भी होनी चाहिए।
0: बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है जहाँ की आप निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं,

0: समस्या है टीका क्षेत्र में, उसको किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, पानी की दिक्कत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है और सबसे ज्यादा हो जाती बारिश में, कि बारिश में क्या होता है कुछ तो पाइपें बह जाती हैं, जिसमें कि हम 5-6 दिन मतलब पाइपें जोड़ने में ऊपर जाने में दिक्कत होती है, जिसमें कि हमारे पास मुलाजिम की कमी रहती है। वो बोलते हैं हम 2 लोग हैं, हम इधर जा रहे हैं हम उधर जा रहे हैं, और पानी जो आएगा बरसात में टोटली गंदा आता है। हम ये चाहते हैं कि उसका एक अलग से डंप किया जाए पानी, और जिसमें कि उसको दवाई डाल के साफ किया जाए और वो साफ पानी मिले, जिससे कि लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साफ सुथरा पानी आएगा। और ऊपर से सीधा अगर पानी हम बड़ी लाइन को करके लाते हैं और उसमें से अलग अलग पानी दिया जाता है, या पर हैंडपंप हमारा एक लगा था नोटरानी पे बड़े साल पहले, उसकी मशीन भी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया,
0: खराब है।
1: कुछ भी नहीं। मैं चाहती मेरी हर वार्ड में एक हैंडपंप हो, जिससे कि पानी लोगों को से मिले, और साथ में हैंडपंप में एक मशीन लगाई जाती है जिससे कि हम घरों में उसका कनेक्शन देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो चीजें लाने, हर वार्ड में एक हैंडपंप लगाया
0: जाए। चलिए जी, आप सभी बने हुए वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम चुनाव संवाद सुन रहे हैं। संतोष कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक हैंडपंप जो है वो काफी सालों से खराब पड़ा हुआ है नोटरानी मंदिर के पास की अगर मैं बात करूं तो, उसको रिपेयर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ध्यान में आपने बात जो है वो लाई है, सभी के, इवन हमारे नहीं, सभी के ध्यान में ये बात जो है वो आपने लाई है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत यूं ही चलती रहेगी, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: FM बैंड 91.2 MHz पर वीडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ चुनाव संवाद। तो चलिए चुनाव संवाद में एक बार पुनः आप सभी का जो है वो स्वागत है। सभी मुझे लगता है विषयों के बारे में जो है वो चर्चा हो गई है और टीका जतायर जो है वो पहली बार जो है अपना प्रतिनिधि चुनेगी। चतहर के लोग, स्लेट गोदाम के लोग जो है वो पहली बार अपना प्रतिनिधि जो है वो चुनेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब इनसे कि किस तरह से, क्योंकि बहुत प्यारी सी जगह, बहुत प्यारा सा गांव है टीका चतहर, धौलाधार के बिल्कुल सामने जो है वो बसता है। वातावरण वहाँ का बहुत शुद्ध है, ठंडी हवाएं वहाँ पे बहुत अच्छी चलती हैं। लेकिन हमने एक नज़र दौड़ाई थी तो वहाँ पर ना एक पार्क के पास जो है वो कचरे का डंप मिला है, वो मुझे याद दिलाता है दिल्ली वाला पहाड़ कचरे का।
1: बिल्कुल, मैं इस बारे में बहुत टाइम से देख रही हूँ, मुझे बुरा लगता है। मैं भी कई बार टाइम निकालती हूँ तो मॉर्निंग वॉक में चली जाती हूँ। हम चाहते हैं सरकार को भी ये, हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कि सरकार को इन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास तो ना पंचायत थी 3 साल से, ना कंटोंड भी चला गया था। अब अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो हम कचरे की कोई जगह ऐसी ढूंढ के जिसमें कि वो वेस्टेज जितना भी है वो वहाँ पे जला दिया जाए, या फिर गिला है तो उसके लिए 2 मशीनें लगाई जाएँ जिसमें कि कहीं गंदगी ना हो और उसको वहीं पे ख़त्म किया जाए, जैसे कि हमारी जो गांव की सुंदरता है ना वो बनी रहे, जो कि आज खराब हो रही है। और इतना अच्छा व्यू हमारा धौलाधार का, उसको वो कहीं ना कहीं वो खराब कर रही है। तो उससे क्या है कि हमारे बच्चों को जो भी हमारे पास सांस लेने की जो दिक्कत होती है, तो अगर गंदगी हवा में आ रही है तो वो सांस के जरिए हमारे अंदर जाती है, कीटाणु अंदर जाते हैं, उसे कई प्रॉब्लमें हो जाती है।
0: तो संतोष जी, कचरा जलाना क्या सही समाधान है या उसको रिसाइकल करना सही समाधान?
1: रिस वो तो अगर हम इसमें करें, मशीन के माध्यम से करें, वो ज्यादा, अब कईयों के पास तो जगह ही बहुत थोड़ी होती है जो कि अपना घर ही बना पा रहे हैं, तो वो कहाँ पे अपना कचरा
0: जलाएंगे। चलिए जी, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम का नाम है चुनाव संवाद। फिलहाल लेके चलेंगे आपको इस प्यारे से गीत की ओर।

0: जरा बच के यह एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। चुनाव संवाद कार्यक्रम में आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो चलिए जी, संतोष कुमारी जी का विजन हमने देख भी लिया और रेडियो पर सुन भी लिया कि किस तरह का इनका विजन है टीका चतहड़ को लेकर। प्रधान पद के लिए ये प्रधान पद की ये उम्मीदवार है और विजन अपना क्लियर कर चुकी हैं। तो आइए जाते जाते देखते हैं कि किस तरह की गुहार, किस तरह की जो अपील है वो टीका चतहड़ और सिलेट गोदाम की जनता के साथ करना चाहती हैं।
1: आज मैं अपनी जनता के सामने अपनी बात रख रही हूँ, अपील कर रही हूँ कि ना मेरा एक जज्बा रहे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करना है, विकास के लिए काम करना है। और मैं इनसे अपील करती हूँ कि एक बार मुझे मौका दे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम लाएं, इनको दिखाएंगे कि कैसे किस तरह से काम होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगी और आप कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए आवाज़ लगाएंगे तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आज मैं आ रही हूँ आपके पास, कल भी इसी तरह मैं आपके पास आऊँगी। और साथ ही मैं, मुझे मौका मिला है गुंजन रेडियो केंद्र में आने का, इन्होंने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। मैं इनके लिए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज सचिन जी ने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छे से। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए हमारा ये रिश्ता बना रहे और मेरी जनता से अपील है कि अपना वोट, अपना जो है उसकी कीमत को समझ के और आप इसका यूज़ करिए। और अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे को प्यार और आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।
0: चलिए जी, गुहार लगी है, जनता जनार्दन है, फैसला जनता के हाथ में है। आप सभी का मैं सचिन कपूर धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर अपना मत का इस्तेमाल जो है वो बढ़िया करें, अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो बढ़िया करें। और चलिए श्रोताओं, लेता हूँ आप सभी से इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई आवाज के साथ। तब तक मुझे यानी सचिन कपूर को दीजिए इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर है, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ

0: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
0: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
0: आके बोलता हूँ पक्का।
2: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा ये पेड़ की
0: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे
1: चकना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबाए
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।

0: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल,
0: याद रही मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। OTP और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
0: मामा,
2: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
4: शादी से पहले वाली
3: हाँ?
4: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों, मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम सुन रहे हो तुसी रेडियो गुंजन धर्मशाला ते आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: से
1: चौक करना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो, जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ए है तुहा सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक दर्शो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहा सारियां दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तुह सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोजाने दा काम है से आज भी करा दे होने न, क्योंकि कामकार जेड़ा से अहां दे हमेशा चलियो रहंदे, कने थोड़ा दे अपनी सेहत दा ख्याल रखना भी अहां दा ही काम है। तो काम दे चक्कर च कदी ना कदी अहां जेड़े से अपनी सेहत दा जेड़ा ख्याल है से रखना भुली जांदे न। तां श्रोताओं 2:02 जेड़ा कार्यक्रम च होईयां न, कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने तो सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहां तक रहंदा है 2 से 3 बजे तक। अहां दे जेड़ा पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके हो न, कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते सरसी जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी, धन्यवाद
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे, कने तुहां दा नां की है जी?
1: दावी ते बोला रहे, कने मेघनाथ ना
0: जी। मेघनाथ जी, क्या काम कार तुहां आज लगाया, क्या करा दे आज तुहां?
1: कणका सटा दे धुप्पा
0: जी। अच्छा, कणका सुखाने दा काम जेड़ा है से आज तुहां छेड़े आवे जी? जी जी, और घर सारे ठीक ठाक है ना?
1: सब ठीक बढ़िया
0: जी। बढ़िया चाहिए ना जी?
1: हाँ जी हाँ
0: जी। और नई ताजी दाढ़ी थी?
1: बस हूँ कल परसों मैं तो ना हो नई ताजी का ना, फिर जान से निकलना
0: जी जी जी। मैं चोना फिर रिजल्ट का इंतजार होना ना जी?
1: हाँ
0: जी। चलो, दाढ़ी च भी रौनक वाला माहौल जेड़ा से बने रहंदा ना जी?
1: लगी है रहनी है तो दो ट्रेना में आवा ग्राउंड
0: जी जी जी, रौनक होना जरूरी है ना जी?
1: हाँ जी हाँ
0: जी। तो आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी?
1: आज पुराना गीत सुनाई दिया, निंद्रे पारे पारे
0: जी। अच्छा, निंद्रे पारे पारे।
1: हाँ जी
0: जी, जरूर पुराना गीत जेड़ा से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: बहुत धन्यवाद
0: जी। अगले जेड़ा श्रोता न सब यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न, कर दें तिना कन्ने भी गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: हाँ जी हाँ, ठीक ठाक है। तुम बोला
0: जी? यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तुहां अपना परिचय जरूर दे दिया कि कुहा जगह दे रहने आ रहे न, कने अपना नाम भी जरूर दसी दिया।
2: ਮੈਂ ਜੀ ਟੰਗਰੋਟੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਰਮੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ
0: ਜੀ। ਟੰਗਰੋਟੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਗੇ ਆ ਤੁਹਾਂ?
2: ਬਸ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਾਣਾ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਆਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ ਦੇ ਆਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨੀ ਕੋਈ ਲਗਾ ਹੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨੀ
0: ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਂ ਕਿਆ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਸੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਂ? ज्यादातर अहां ई सोचदे न कि जनता दे हाथ च हुंदा ना सब कुछ ना जी?
2: हां जी
0: जी। तां अगर अहां अच्छा उम्मीदवार बनांदे न तां अहां दे जेड़ा काम मन अहां ही चाहते कि जनता दे जितने भी काम मन उन्हें जो जेड़ा कोई भी है से अच्छा उम्मीदवार बने कने से काम जो करे ना जी?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। तो वोट दा जेड़ा वोट देना है तो सोची समझी करी ही जेड़ा है से देना है ना जी?
2: वोट तो देना पर बंदा दिखना पड़ेगा कि कम करने वाला है कि बच्चा मारने वाला
0: जी। ये भी ठीक बोले तो हाँ कि काम करने वाला अगर जेड़ा है उम्मीदवार तो जो तो हाँ जरूर वोट दिया कि ने अपने जेड़ा काम मन से भी करवा, क्योंकि अहां दे अगर अहां सही उम्मीदवार जो वोट पांदे न तो कुथी ना कुथी से अहां दा काम भी करदा है, कने काम करने वास्ते तो अहां जिहड़ा से अपने वोट दा जिहड़ा अधिकार है उस जो एक वोट कितना कीमती होंदा ना जी अहां वास्ते।
2: हाँ जी
0: जी जी जी ता रमेश जी और नोई ताजी तंगलोटिया दी।
2: हाँ जी
0: तंगलोटिया दी और नोई ताजी।
2: और नोई ताजी कोई नहीं है, बस ये चल रहा
0: जी। गर्मी
2: ये दौर आज चल रहा
0: जी। गर्मी कितनी की है?
2: गर्मी कभी बदल ज्यादा के ना कभी धूप नहीं पड़ी
0: जी, कभी बदल कभी धूप लगी पौधी ना जी। थोड़ा मौसम ठंडा भी है गर्म भी है ना जी।
2: गर्म भी आ गया ठंडा भी है, पर अच्छा मौसम है
0: जी। मौसम जेड़ा ऐसे ठंडा ठंडा भी अच्छा लगा था, कने थोड़ा देर धूप का भी इतना एहसास जेड़ा ऐसे नहीं होता ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी?
2: आज गाना सुनाई दे दे दे दे दे सुंदर नार बुढ़ा कजो दे आई
0: जी। कुंदिया गाना सुनने जी तो हाँ
2: दे दे सुंदर नार जबरा कजो दे आई
0: जी। जी जरूर तुहदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
2: जी।
0: जी तुह सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। अपने कार्यक्रम दा आगाज कर देना इस प्यारी दिया फरमाइश कन्ने, प्यारे दे भजने कन्ने।

0: माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे सुना देना अपनी रेडियो शशि कन्ने। इसी कन्ने तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दया भजन प्यारी दी फरमाइश। इस भजन दी फरमाइश आहां जो आई हुए दाड़ी ते कन्ने तिना दा नाम है मेघना जी। मेघना जी तक आहां ये भजन पहुँचाया कन्ने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। कन्ने अज कने दिने दी जिहड़ा खास गल है या खास दिन हाँ आज क्या बना दिन सभी तो हाँ तक जरूर पहुँचाना है। जो भी मई 2026 की अगर अहाँ गल करिए अजकना जरा दिन है सियाह वास्ते बेहतर खास है। उन तो हाँ सोचा दे होने कि खास कहो है हर साल जड़े से 24 मई जो अहाँ जरा भाइयों का प्यार है या भाइयों का जरा आपसी प्यार है या बचपन दिया जड़ा यादा न सियाह जो हमेशा एक ही दुए ने जोड़ी करी रख दिया न ता तो हाँ सारे भी जड़े से कोई भी रिश्ता है चाहे सियाह दे माता पिता दा बच्चे कन्ने रिश्ता है चाहे भाई बहन दा रिश्ता है चाहे भाई भाई दा रिश्ता है सियाह दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। पर अज कने दौर दी अहां गल करिए तां कुथी ना कुथी ये जिहड़ा रिश्ते न सियाह जो फीके नज़र जिहड़ा से आउंदे न इहदे उप्पर जरूर अहां जिहड़ा गलबात है से करनी है कने तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकदे। जुड़ने वास्ते जिहड़ा अहां दा नंबर है पहले से तुहां तक पहुँचाइंदे न नंबर है 701-811-7091 तो नंबर तुहां तक पहुँचाईता है कन्ने अगले जिहड़ा श्रोता न सियाह कन्ने जुड़ चुके न पुछदे न तिना ते से कुत्थों ते बोला दे कन्ने तिना दा ना क्या है। हैलो
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी ठीक ठाक है न
1: जी बढ़िया खास है ना
0: जी अहां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कोहा जगह दे रहने वाले न कने अपना जेड़ा नाम है सभी जरूर दसी दिया।
1: सिद्धवाड़ी ते कने मेरा नाम वंदना देवी है
0: जी। सिद्धवाड़ी ते वंदना जी।
1: हां जी
0: जी वंदना जी क्या हाल चाल है सिद्धवाड़ी वाले आंदे
1: बस कल मेला होने कल मिलियो
0: जी। अच्छा सिद्धवाड़ी दा मेला जिहड़ा से हां जी लग्या मेला
1: हां जी राजा हिंदुस्तानी फिल्म दिखा दे
0: जी जी
1: जी मैं ना गाना सुनना था
0: जी कुंडिया के गीत सुनने जी तो
1: बागा फूल खिड़िया वो खिड़िया लाल रंग दा
0: जी एक बारी गाने दे बोल जेड़न से फिर ते रिपीट कर गए जी
1: बागा फूल खिड़िया बखिड़िया लाल रंग दा
0: जी। अच्छा बागा फूल खिड़िया लाल रंग
1: लाल रंग दा जी
0: जी जरूर ए फरमाइश तुहां तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
1: जी।

0: जी तशुतम फिरी त्यहाँ थोड़ा ते आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न, क्योंकि कार्यक्रम का जेड़ा समय है सभी अपना जेड़ा रफ्तार लेकर ही चल रहा है, कने समय के अनुसार चलना हाँ वास्ते हमेशा जरूरी है, कने हाँ दे जेड़ा श्रोता न सभी जरूर समय अनुसार इस कार्यक्रम च जुड़ा दे न, तो अगले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके हैं ना तिना करने भी कर देना गल बात। हेलो
1: नमस्कार जी। हाँ
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: ठीक ठाक हैं जी।
0: जी हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, तुहां ठीक ठाक हैं ना
1: हाँ जी, सब ठीक ठाक जी।
0: जी। ता अपना जेड़ा परिचय है से जरूर दे दिया कि कोहा जगह दे रहने वाले जी तुहां।
1: मेरा नाम तारा चंद है, मैं दाड़ी का रहने वाला जी।
0: जी तारा चंद दाड़ी दे रहने वाले न
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जी। ता आज क्या तुसा करा दे, क्या जिड़ा काम कार छेड़िया
1: आज हाँ दुकाना बैठी हूँ,
0: जी
1: बाकी मैचा वाले वो आ गए, पूछो
0: जी रौनक लगी
1: पुलिस
0: हो
1: रौनक लगी हो, पुलिस वाले वो आ गए, बेचारे
0: जी
1: ठहरी गई हो,
0: जी
1: रौनक लगी हैं मेरे ख्याल
0: जी रौनक होना
1: दाड़ी
0: जरूरी है
1: चिकर
0: ना
1: दाड़ी
0: जी
1: चिकर। हाँ
0: जी
1: जी हाँ जी।
0: जी ता तारा जी आज हाँ जिड़ा खास दिन बना देना से तो हाँ जरूर सुनी लिया होना है, अगर तो हाँ प्रोग्राम शुरू ते सुना दे होंगे ता
1: मैं नहीं सुने जी, मैं वो नहीं किता हूँ ना, मैं घर घर पे आया।
0: जी। अच्छा लेट
1: हाँ
0: हुई है
1: जी
0: तो हाँ
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जी। ता आज हाँ जिड़ा खास दिन बना देना से बना देना ब्रदर्स डे,
1: अच्छा
0: भाइयों का
1: ब्रदर्स।
0: जिड़ा प्यार है ना से
1: हाँ
0: आपस
1: जी
0: च
1: हाँ जी
0: कितना ज्यादा जरूरी है ना जी
1: हाँ जी, बहुत जरूरी होता जी
0: जी
1: होते
0: तो
1: हैं।
0: तुम्हें क्या
1: पर
0: लगता आज ने दौर चीज चीज आहां जो दिखने जो मिला दी या ना मिला दी।
1: आजकल लक्ष्मण साई कोई भ्राता नहीं है
0: जी जी
1: जी, नहीं
0: जी
1: नहीं है कोई, ऐसा है नहीं दिखने चो, कोई सोए तो एक दो चार पांच होने भी ना,
0: जी
1: बाकी अदरवाइज तो मुश्किल
0: जी सही है ना कि
1: ही।
0: हर किसी
1: हाँ
0: दी सोच बड़ी अलग होंदी ना जी।
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: मेरी
1: बिल्कुल।
0: सोच क्या है से तुहां जो पता नहीं है, तुहां दी सोच कैसे मुझे पता नहीं है, बाकी अगला
1: हाँ जी
0: जेड़ा
1: हाँ जी
0: व्यक्ति है
1: हाँ
0: तिस
1: जी
0: दे मन च क्या चल रहा से मुझे
1: हाँ
0: पता
1: जी
0: नहीं है ना
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी
0: क्योंकि
1: आजकल हाँ
0: जी
1: जी आजकल ऐसा है ना कि
0: जी
1: ब्रदर नहीं है इकट्ठे रहा दे, अलग
0: जी
1: रहा दे,
0: जी
1: कोई गल नहीं करता, मतवल दी गल कर दे बस, या
0: जी
1: सुनो ही बस, कोई ऐसा नहीं प्यार नहीं, कुछ ना कोई गल
0: जी
1: नहीं बात नहीं है। आजकल
0: जी
1: पता नहीं कलयुग का प्रभाव है कि पता नहीं क्या हो गया उनको।
0: जी शायद कलयुग भी बोली सकते कन्ने आहां हमेशा अपना जेड़ा फायदा है से दिखते ना जी,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: रिश्ता कोई भी है चाहे से माता पिता दा रिश्ता है चाहे से भाई बहन दा रिश्ता है चाहे कोई
1: हाँ
0: भी
1: जी हाँ
0: रिश्ता है से
1: जी
0: अपनी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है ना जी।
1: हाँ जी।
0: दिखा
1: दो ही
0: अगर
1: आजकल
0: जी
1: बिजी लाइफ भी बड़ी रखी है, आजकल टाइम ही नहीं कुछ, बिजी लाइफ सारे बिजी है ना।
0: जी जी ईसा
1: नहीं
0: बिजी लाइफ नहीं था कुथी ना कुथी यहाँ दे जेड़ा रिश्ते ना तिना तिना च अपनापन बिल्कुल खत्म है
1: खत्म हो गया वरना
0: जी।
1: सारा
0: अगर
1: ठीक
0: हाँ किसी कन्ने खुली की गल बात नहीं करते ना तो हाँ जो क्या समझ आंदा है, कुछ भी समझ नहीं आंदा है ना जी।
1: कुछ नहीं होता कुछ नहीं।
0: अगर
1: हाँ
0: हाँ
1: कोई प्रॉब्लम
0: जी
1: है कोई
0: जी
1: तो अपने भरा दे बीच कोई गल
0: जी
1: करा से
0: जी
1: सोल्यूशन निकलता थे दा कोई,
0: जी
1: पर
0: जी
1: ऐसा है नहीं आजकल, होता नहीं, सुनी के राजी नहीं था कोई, इसलिए क्या कहना,
0: जी
1: जब उसकी हल चली है गल करना
0: जी
1: तो कोई मतलब जरूर है
0: जी
1: आजकल
0: चलो
1: ऐसा। फिर
0: अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव
1: हाँ जी हाँ जी
0: सोचना चाहिए ना जी,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: क्योंकि
1: होता है।
0: जिंदगी ता दो पल दी मेहमान है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी ऐसा
0: आज का दिन
1: नहीं।
0: आहां दा क दिया गया या आने वाला पल आहां दा किस प्रकार है से आहां जो कोई पता नहीं है,
1: हाँ जी हाँ जी
0: पर अगर आहां प्यार भावना इक्की दूवे अंदर रख देना या हाँ भाई भाई अगर बनी करी रहन देना या प्यार भावना
1: जी
0: एक दूसरे कन्ने रख देना ता ये रिश्ता
1: एक
0: इतना
1: में
0: जी
1: एक मेन मकसद समझ नहीं आता, इं जो छड़े होंगे ना ब्याह भी होने
0: जी
1: तल ठीक
0: जी
1: रहते भरा
0: जी
1: भरा सब
0: जी
1: ठीक होंगे,
0: जी जी
1: उसके बाद पता नहीं क्या किंतु परंतु यार कोई समझ नहीं आती, उसके बाद फिर दूर होते होते होते होते हो ही
0: बिल्कुल ही दूर हो
1: आते
0: जी
1: फिर। पता नहीं क्या चक्कर हो जाना इसके बाद,
0: जी
1: भगवान जाने।
0: जी सही ना कि बाकी रिश्ते भी जुड़ते जाते कने आहदा चिड़ा बोल चाल है से अच्छा होना जरूरी है ना जी। सबसे बड़ी गल जेड़े से आहदा बोल चाल पर आहदे जेड़ा शब्द है ना एक उसी अगले व्यक्ति जो पर नुकसान भी दे सकते या हाँ अपने जो करीब भी लाई सकते या तिना ते दूर भी हो सकते ना जी। अगर हाँ अपने शब्दों का जेड़ा उपयोग है या हाँ कुछ भी बोल देना 100 बार सोचा कि हाँ सही बोला दे कि गलत बोला दे क्योंकि हाँ दे पेरेंट्स तो हाँ जो हमेशा यही सिखाते कि बड़े का मान सम्मान करना है चाहे छोटे न तिना का भी मान सम्मान करना है ना जी। जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी
1: आज तुम्हारा सुनाई दिया लाड़ी के, लाड़ी तेरे नखरे बड़े भारी।
0: जी लाड़ियां दे नखरे बड़े भारी होंगे ना जी। जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा
1: अच्छा
0: बड़ा
1: ठीक,
0: धन्यवाद जी तो हंदा
1: धन्यवाद
0: जी। दर्शो तो थोड़ा दे अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ा देना कने तो हाँ जो लेकर चल देना फरमाइश दी और सुन देनी सब प्यारी दिया फरमाइशा जो।

0: अच्छा, वैसे भी कोई काम कार जी ऐसे नहीं होता ना जी। जी जी और नोएता जी
1: कोई
0: जी तो हम इस प्रोग्राम में जो रोज ही सुनते
1: नहीं
0: जी, कदे लगता तो हम जो ये प्रोग्राम
1: प्रोग्राम
0: जी। चलो अच्छी गल है ना जी, अपना काम भी करी सकते, कन्ने रेडियो कन्ने थोड़ा मन भी लग्या रहंदा ना जी।
1: हाँ
0: जी तो आज हाँ जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन ब्रदर्स डे, कि जेड़ा भाई हैं तिना दा प्यार एक दूसरे च होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना जी।
1: जी हाँ
0: जी चाहे से भाई भाई हैं चाहे भाई बहन हैं, हर रिश्ता हमारी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है ना जी।
1: जी हाँ जी बने
0: जी
1: का
0: जी जी तो तुहें कह जी
1: कर
0: जी जी तो दी आवाज कुछ क्लियर नहीं हो दी जी, कट्टी कट्टी की हो दी।
1: रहा
0: हाँ जी
1: कटी कटी
0: जी सिग्नल भी कौन है शायद ना जी।
1: आयो जी
0: जी जी उन ठीक हो दी
1: कटी हाँ
0: जी। कणका कुणका स्काई लिया तो हाँ,
1: जी वो आ जाओ
0: कणका कुणका स्काई लिया तो हाँ महा।
1: ना अच्छा जी हाँ तक तो कबाने यार खरीदी
0: जी
1: कहाँ
0: जी अच्छा, जी मतलब अपनी जेड़ा जमीन है से नहीं है तो हंदी।
1: सुनाना मापे देर छनकार हाँ जी
0: जी अच्छा, चिमटे दी छनकार सुननी है तो हाँ
1: माता जी
0: जी जरूर, तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: धन्यवाद
0: जी। अगले जेड़ा श्रोता ना तिना कन्ने भी कर दे ना गल बात। हेलो
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: और ठीक ठाक है ना
0: हाँ जी ठीक ठाक है जी, तोह कुछ उत्ते बोला दे कने तोहंदा ना क्या है जी।
1: मेरा नाम हरि सिंह है जी
0: जी तो दिया अपने रेडियो सेट की आवाज़ सिरे से कम करी लें जी। जी जी करी ली आवाज़ तो कम
1: बोला
0: जी। हरि सिंह जी क्या काम काल लगे तो हाँ क्या करा दे
1: काम कर दे उनका
0: जी। अच्छा दुप्पा च आराम करने का ही समय है ना इस टाइम, वैसे भी दोपहर का समय जेड़ा ऐसे थोड़ा रेस्ट करने वाला होता ना जी।
1: हाँ जी रोटी राटी खाधी मतलब थोड़ा आराम कर लेंगे
0: जी जी जी तो मेरी गल बात तो हाँ सुना दे कि नहीं सुना दे थे
1: हाँ जी
0: जी। तो तुम्हें क्या लगता जेड़ा आज हाँ खास दिन बना देना, खास दिवस जेड़ा ऐसे बना देना ब्रदर्स डे, भाइयों का जेड़ा
1: अच्छा
0: प्यार है से एक दूसरे च होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना जी।
1: हाँ
0: जी ता आज के दौर की यहाँ गल करिए ता हर कोई यही बोलता है कि यहाँ समय नहीं है ना जी, या से
1: जी
0: रिश्तों च मिठास जड़े से थोड़ी फीकी दे पई है ना जी।
1: ठीक बोला जी
0: जी जी जी क्योंकि यहाँ हमेशा अपना जड़ाए से दिख देना, या हाँ जो ये परवाह नहीं होंगी कि यहाँ क्या सोच विचार करा देना या क्या बोला देना, मतलब बोलने से पहले हाँ सोच दे भी नहीं ना जी।
1: जी कुछ तो सोचना फोन
0: जी जी
1: लाना
0: जी क्योंकि रिश्ते एक ऐसी डोर है ना जी,
1: जी
0: जिन्हें हम मोतियां दी तो हाँ माला दिखी होनी ना जी।
1: जी
0: जी अगर है माला टूटी आंदी है तो से मोती जड़न से बिखरी आंदे है ना जी।
1: मोती मोती बिखरी आंदे फिर से
0: जी
1: बटोलना बड़े मुश्किल
0: जी जी जी
1: होंगे
0: उसी प्रकार हाँ अपने रिश्तियां दी गल करन या परिवार दी गल करन या कोई भी रिश्ता।

0: ना जी।
1: अब रिश्ते बनाने थे उनके कहना नहीं बनाइए तो दूर चल जाते रिश्ते से जी।
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: गीत सुनना है सुनील राणे का किलनिया टंगोई जाना।
0: जी सुनील राणा दी आवाज जेड़ा गीत ऐसे सुनना है तो हाँ
1: हाँ जी
0: जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा
1: धन्यवाद जी धन्यवाद।
0: जी तो हंदा भी धन्यवाद जी। तर्शो तो थोड़ा दया क्या बढ़ देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुंचान देना। तो हाँ सारी भी इंतज़ार जेड़ा है से करा दौने ना कि यहाँ दिए जेड़ा फरमाइश है ना से यहाँ तक कालू पूछ दिया ना। सुन दे निसा प्यारी दिया फरमाइशा जो प्यारे दे भजने जो।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश। इस भजन दी फरमाइश यहाँ तक पहुँची हो वह व्हाट्सएप दे थ्रू, तिना दा नाम भी जरूर तुह तक पहुँचा देन। तिना दा नाम है सुनील कुमार जी, कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोटते। तुह सारे भी ये भजन इंजॉय कीता, कने फिर ते अहाँ वापिस जिड़े से अपनी गलबात ऊपर आई हो न। गलबात अहाँ करा देन आज अहाँ जिड़ा खास दिन बना देन, ब्रदर्स डे जिड़ा खास दिन अहाँ बना देन, भाइयों का जिड़ा भाई भाई का जिड़ा प्यार है, चाहे भाई बहन का प्यार है, से एक अनोखा जिड़ा रिश्ता है, से है अनोखा रिश्ता ताई है जलू अहाँ उस रिश्ते जो समझ देन या प्यार भावना एक दूए अंदर रख देन। बचपन का दौर कितना प्यारा था ना, ना किसी चीज़ की टेंशन थी, ना किसी चीज़ का तनाव था। अगर लड़ाई भी करते थे फिर भी से लड़ाई जड़े से प्यार बराबर होती थी। बचपने दियाँ जड़ा गल्ला न से हमेशा अहाँ जो याद अहाँ तिना जो करते न तो कुथी ना कुथी तिना जड़ा लम्हे न से अहाँ जो सुकून दे करी जानते न। भाई बहन कन्ने लड़ाई करना, भाई भाई कन्ने लड़ाई करना कुछ से खास ही दौर था। तो बचपन दिया यादा तो हमेशा हर कुसी जो याद होनी है ना, बचपने दा जिड़ा दौर है से सबसे बेस्ट है। कने जिड़ा तीस जिड़ा यादा ना तिना जो हाँ संजोई करी रख देन। तो तुहां सारे भी थोड़ा दिया मोबाइल फोन ते हटी करी अपने बचपन जो अपने जिड़ा भाई बहन हैं या भाई हैं तिना जो खूब सारा प्यार दिया, खूब सारा जड़ा मस्ती है से करा, समय दे अनुसार हर चीज़ करा। हाँ हमेशा ही बोल दे न कि रिश्ते अंदर मिठास जड़ा है से ज़रूर रखा, मिठास होना ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते अंदर। अगर ये मिठास जड़ा है से थोड़ी देर भी कम हो जाती है तो रिश्ते जड़े से कुछ ना कुछ फीके जड़ा है पे आते हैं, पर से यहाँ पर निर्भर कर दे कि यहाँ कितनी की अहमियत जड़े से अपने रिश्तियाँ जो दिन देन। अजकने दौर च अजकने दौर की अगर अहाँ गल करिए तो ज़्यादा समय जड़े से अहाँ मोबाइल फोन दी और अपना समय जड़े से लगा देन या स्टेटस पर अहाँ जड़े से शो कर देन। अगर रियल च तो हाँ अपने भाई बहन कन्ने समय बिताते न या तिना जो समय देंदे न तो तिना जो भी अच्छा लगता है कि नहीं अहाँ दे जेड़ा भाई है या अहाँ दी जेड़ा बहन है से अहाँ जो समय जड़ा है से जरूर दे दी है। तो थोड़ा दिया आज के दिन जो खास बना सारी सोच विचार करा कि यहाँ आज के दिन जो किस प्रकार खास जड़े से बनाई सकते न, कने एक ही दुए ने जड़ा प्यार भावने से किस तरीके ने रखी सकते न। हाँ फ्री तो थोड़ा दे आगे बढ़ते न क्योंकि समय जड़े से अपनी जड़ा रफ्तार लेकर चल रहा है तो समय के अनुसार भी यहाँ जो चलना जरूरी है। कने जड़ा तो दियाँ फरमाइशा न सभी तुह तक पहुँचानी है न समय अनुसार चल देना सुन देना इस प्यारी दिया फरमाइशा जो।

आ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा दिन आपनी रेडियो दो शशि कहने करे तो हाँ सारे ये भजन इंजॉय की था। इस भजन दी फरमाइश हाँ जो आई हुए सिद्धबाड़ी ते कने तिना दा ना वे वंदना जी, वंदना जी तक कहाँ ये गीत ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की था। इसी भजन कन्ने थोड़ा देया हाँ फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने सुनते न अगली फरमाइश।

दर्शो तो तारा चंदी फरमाइश जेगी तहा तीना तक पहुँचाया कने से रहने आई न गाड़ी पे तो तुह सारे भी ये गीत जड़े से इंजॉय किया होने कने फ्री थे कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ चुके होने न कने मेरी गलबात करने भी जरूर जड़े से तुह जुड़ी होने न गीत संगीत भी हाँ दी जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करता है कने जड़ा हाँ दी गलबात है सभी अहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका जड़े से अदा करती है अपने दा प्यार जड़े से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका जड़े से अदा करता है ता भाई जड़ा ब्रदर्स डे है से अज अहां बना दे न कने तो हां सारे भी जड़े से खूब अपना जड़ा प्यार है से अपने भाइयों वास्ते निछावर करा दे उन्हें न कने विश जड़ा से तिना जो करा दे उन्हें न कने आज संडे है संडे की छुट्टी भी तो हाँ जरूर इंजॉय करा दे उन्हें न कने इस खास दिन जो और भी मस्ती भरा जड़ा से बना दे उन्हें न कई बार होता ना कि हाँ बचपन दियाँ यादा च खोई आते कने फिर यहाँ यही सोचते कि बचपन वाला जड़ा दौर है से प्यार भावना जड़े से फिर ते वापिस जड़े से आई है पर से अहाँ जो अपनी सोच जड़े से थोड़ी देर बदलना पौनी अगर अहाँ पॉजिटिव सोचते न अच्छा सोचते न अच्छी सोच कन्नै अपने रिश्तियां जो अहमियत दिंदे न ता से जड़ा रिश्ते न से हमेशा एक मिठास भरे रहते न पर से अहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ किस प्रकार अपने रिश्तियां जो अहमियत जड़े से दिंदे न अगर अहाँ कोई काम करते न अगर अहाँ इस कमे जो मिली जुली करी करते न या सोच अपनी मिली जुली करी करने वाली रखते न तो सारे जो ही पता है कि अगर अहाँ पुराने समय दिया गल्ला जड़ा न तिना जो ताज़ा करिए तो कुथी ना कुथी ये प्यार भावना जड़ा से एक दुए अंदर दिखने जो मिलती थी अहाँ कोई भी काम करते थे चाहे से भाई भाई है न भाई भाई मिली करी अपना घरे का जड़ा काम है या बारा का काम है या खेती बाड़ी का काम है या कोई भी काम है से हमेशा मिली करी करते थे तिना जो रिश्तियाँ की जड़ा अहमियत है ना से समझ थी कि रिश्तियाँ की अहमियत जड़ा से अहाँ की जिंदगी कितनी ज़्यादा है कने कोई भी घर है फंक्शन है या कुछ भी है फंक्शन ताई अच्छा लगता है जल वहाँ मिली जुली करी तीस फंक्शने जो अटेंड कर देना या कोई भी काम है तीस जा पता नहीं चलता है पर उन्हें दिया हाँ गाल करना ता सारे ही जड़े से अपना अपना काम करना पसंद कर देना पर तीस कमे च सह वाला सुकून सह वाला जड़ा माहौल है से दिखने जो नहीं मिलता है अपनी गलबात जो अहाँ इतों ही रोक देना क्योंकि फरमाइशों का जोड़ा दौर है सियाल साथ है कने समय जोड़ा सियाल कम है।

तो श्रोताओं तो सारे सुने ये प्यारा देहा भजन प्यारी दे फरमाइश। इस भजन की फरमाइश आ जो आई वे व्हाट्सएप के माध्यम ने कनती ना दा ना वे राधा जी राधा कश्यप जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तिना तक हाँ ये भजन पहुँचाया कने अगला जेड़ा भजन है अगली जेड़ा फरमाइश है सभी हाँ तो हाँ तक पहुँचा देन। ए फरमाइश अहाँ जो आई वे डाट ते कने तिना दा ना वे पिंकी जी।

मेगाहर्ट्स पर ए ए तुहा सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देखे अपनी रेडियो दो शशि कहने तो सारे जी पता है कि इस कार्यक्रम का जरा समय ऐसे तो तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो कार्यक्रम का जरा समय ऐसे आना जो बोला था कि तुह सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा अपना जरा ख्याल है सभी रखा कने अपने जरा रिश्ते न तिना का भी ख्याल जो है से जरूर रखा क्योंकि भाई बहन का जरा रिश्ता है से एक जरा सुनहरा रिश्ता है अगर अहाँ प्यार भावना ने इन रिश्तों चो बचाई करी रख देना तो कुछ ना कुछ अहाँ अपनी जिंदगी जो बेहतर जरा से बनाई पाते हैं तो इसी कने अपनी रेडियो दो शशि जो दिया

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
2: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
2: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
4: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
5: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इतना सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 超开脑。
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वीडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ तो सो के तुंदा अपना आज ये वीडियो जो कि सचिन कपूर आज हाजिर बुझगो तुम्हारा जो इंडिया का भाई थी है जो कि आई थिंक CRPF में या BSF में अपनी सेवाएं दे चुके कर देने इस वक्त त्यारा ये बलना थोकी कदी कदी तो है त्योहारों भी किया सो जरूर इच्छुक रहता है तस तरीके हो गए भी कि अपना शेड्यूल है बनाई लेन देन की त्योहारों भी किया इंदे श्रोता हो गया है रूबरू बुचिकान है ना लाइव रूबरू के अंसो बुचिकान ता श्रोताओं तो सब जरूर अस हो गई जुड़ी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो वो गीत साझा कर सकते हैं ना यह गलारा विशेष ध्यान रहे कि जानकारी किया सो वेडियो मंच दसने लाइक बॉक जो कि तू सब बखूबी जान देन कि वेडियो गुंजन तो सब होनु कर देन और लक्ष्य श्रोता के अंसो असूगी बन रहे बंदे हैं बहरहाल इंदे पहले श्रोता सो की बनी चुकरन और फरमाइश भी किया सो चली छोरे कमल नेहरी गौरा गी था और करमचंद जी द्वारा ये फरमाइश छोरे श्रोता हूँ जो कि नियर नोडरानी मंदिर रहे निवासीहीन योल कैंट नियर नोडरानी मंदिर रहे निवासीहीन या फिलहाल कार्यक्रम मंच चल देन हगूँ और इंदे श्रोतागण हस होगी कनेक्टेड हैं हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: हाँ जी क्या हाल चाल जी
1: बढ़िया सर जी
0: और क्या लगुरा करना कर करे लगुरे ने
1: कुछ नहीं सर जी थोड़े प्रोग्राम सुना दे सर जी
0: अच्छा प्रोग्राम होने दें और सब राजी बाजी है जी
1: सब राजी बाजी सर जी आपने छुट्टी नहीं कितनी तो हाँ
0: चलो जी ठीक है तो हाँ राजी बाजी ना जी
1: हाँ जी नहीं सर जी राजी बाजी ने
0: चलिए और
1: जो दिन निकला वो सही है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ जी सर जी
0: कुंड ने की थोड़ा जी
1: मोहित गर्ग की आवाज सुनाई ने गाना कैंथी दी डाली
0: कैंथे दी
1: डाली आरबो ग्वालिया कैंथी दी डालिया
0: अच्छा आरो
1: हाँ जी सर जी
0: ठीक है जी जरूर ये गीत तुसको होने ले है ना जी
1: धन्यवाद सर जी
0: धन्यवाद जी धन्यवाद
1: नमस्ते सर जी
0: नमस्ते श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम तो सब हूँ कर दिन बिल्कुल लाइव हार जी सचिन कपूर सो के लाइव कार्यक्रम के सो इस समय चल रहा है श्रोतो और चलिए बहुत सारी जानकारी हैं वैसे भी पंचायत में चुनाव रहा माहौल किया सो इस समय चल रहा है श्रोतो और बहुत सारी पंचायत में जितनी भी हिमाचल की पंचायत है सभी जगह के सो ये माहौल बन रहा है और एक पदभास्ते के सो काफ़ी प्रतिनिधि भी खड़ रहे हैं लेकिन बलदेन की जित सेरे बंदे जिसेरे मथे पर राज तिलक लिख रहा बुआ और जिन्हें वाकई में ही किया असो काम कर रब हुआ जो वाकई में मन होगी किया सो तहजीब होगी किया सो गल करा लिहाजे होगी किया सो गल करा सो अक्सर मन हो किया सो जितंदा हा बहुत सारी गल्ला इन बहुत सारी बातें तुस होगी गलबात है तुस होगी करने और श्रोता लेकिन या फिलहाल ता है सब श्रोता के ना सो चल देन और धर्मशाला का मौसम मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा रहा तू सब भी दसना क्योंकि बहुत सारे श्रोता के सोस होगी भारतों भी जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं तो तिंजो बड़ा सो बड़ा उत्सुक रहते हैं कि धर्मशाला मंच क्या मौसम बोला था इस समय आओ दसना चाहता 24 degrees के आसपास किया सो धर्मशाला मंच मौसम बन रहा है ह्यूमिडिटी अरे गल करूँ अंग्रेजी का शब्द है ह्यूमिडिटी वैसे हिंदी में नमी बोलते हैं 26% किया श्रोता हूँ सो नमी बन रही है तो इस समय धर्मशाला का मौसम है तइए जी आगाज कर लेंदेन करमचंद जी री फरमाइश में जो कि नियर नोडरानी मंदिर निवासीहीन यानी फरमाइश में जरूर आगाज कर ले लेकिन इन द अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी हेलो नमस्कार जी हेलो हेलो नमस्कार नमस्ते जी माफ़ करें जी तुंदी आवाज़ असू तक ना पहुँचुंदे है तो सो डिसकनेक्ट कर देन फिलहाल आगाज करते हैं ना है सब इस गीता होगी मणि रे तो सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने पन रे वापिस मूल देन श्रोता कुछ एक खास जानकारी लेकर

शोध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा हूँ सचिन कपूर तुंदे वीडियो सेट में बिल्कुल हाजिर हाँ था। बहुत सारे श्रोता इस समय ऐसा होने कर दें था शोधों अगर होने कर दें तो ज़रूर कॉल कर ही सकते हैं और दस से भी सकते हैं कि तुंदी किनारी की आसो इस समय किस प्रकार रहा माहौल के आसो चल रहा है, यानी कि पंचायत जो लेकर पंचायत चुनाव जो लेकर के आसो किस प्रकार रहा माहौल है और सेरा पलड़ा के आसो तुसु ही लगो करता कि शायद सेरा पलड़ा के आसो भारी हो सकता और आम जनता क्या चाहते अपने प्रतिनिधि तो कुछ सवाल

आठ अक अक 7098 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गलारा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर हुआ रेडियो मंच दसने लायक किया श्रोताओं सो जानकारी जरूर बुआ है ना। क्योंकि तू पता कि कार्यक्रम जो मुल्क मनु के सो हूँ दिन फॉलो कर दिन इस कार्यक्रम जो है ना प्यार दिन दिन सियाने नौजवान सभी तो फिर चलिए थोड़ा करिए और आगू बढ़ दिन है श्रोतो और थोड़ा पेट्रोल डीजल मंच किया सो आग जरूर लगे। हाँ हिमाचल में पेट्रोल सोतों पार बुचगो और श्रोतों लगभग और केंद्र सरकार है किया सो बढ़ाए दाम था पेट्रोल किया सो 87 पैसे डीजल किया सो 91 पैसे फिर ये छुलवा और प्रदेश में श्रोताओं कई भागा माताओं तो सो दसना चाहता कि सोतों पार के सो करीब पुजगो इस समय पेट्रोल 9 दिन रे भीतर तीजी मौके के न सो दाम बढ़ाए इन श्रोतो महंगाई और बढ़ने व जो है सो संकेत इन श्रोतों सेब ढुलाई पर भी किया सो असर पैना यानी कि सेब भी किया सो महंगे बुने इन श्रोतों और हाँ वाकई में थोड़ा करी जो आम जनता है जो बड़ी मुश्किल था महीने रहा 8-10 हज़ार या 10-15 हज़ार बिच किए सो कमाऊ कर दिया तीन वास्ते वाकई में थोड़ा आवे ही मतलब जिंदगी जीना गया सो मुश्किल दे ही लगते है जिंदगी जीना गया सो टफ दे ही लगते यार सो तो थोड़ा करी अगर हालात सामान्य बुझगे तो शायद फिर एक मौके के सो डीजल पेट्रोल थोड़ा करेगा अटके सो बच गए लेकिन फिलहाल तो उम्मीद कोई नहीं फिलहाल यही उम्मीद है कि हिमाचल में सो थो सो तक के सो पुजे गोवा पारा है ना। तो बहरहाल है चलते नगो श्रोतों तो सब बन रहे इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सो गया और यारी फरमाइश में किया सो मोहित घर ग्रह इन गीत बोलो तो मोहित घर ग्रह जो इन गीत बोलो सो गीत इन होने इन शो तो बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हसूगी आप बन रहे ना सोगी जुड़ रहे तैयारी सब मेरे और तो अपने कार्यक्रम में जरूर इसमें कॉल कर सकते हैं श्रोताओं 7018 पर नंबर अक मौके फिर 7018 पर तो कॉल कर सकते हैं। चलिए चल दें और यारी फरमाइश में हूँ दिन मोहित गर्ग्रह गुरा गीत

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून को रॉर कार्यक्रम इस वक्त इन दी अपने गप्पा गेंद सो बिल्कुल लाइव चल रही तुम दे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंजे तैयार श्रोता हूँ कार्यक्रम जो हागो बढ़न देन तो है सब बन रहे इस समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हूँ कर देन बिल्कुल बिल्कुल हिंदी अपनी गप्पा कार्यक्रम हूँ कर देन जी बिल्कुल लाइव हूँ कर देन और चलिए इन दे कुछ श्रोता सो के कुछ छोटा के सो मैसेज भी भेजो कर देने सो जरूर पढ़ ले यानी मैसेज जो लेकिन तथ्यों पहले शो कुछ एक खास जानकारी तो सो गया है शेयर कर लेते हैं एक कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है तो है सब रेडियो गुंजन सोगी बन रहे एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर हिमाचल प्रदेश में मई महीने रे बीच भी किया सो काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी किया सो बच्चो कर दी और बड़ो थोड़ा करी किया सो परेशान भी नहीं है गर्मी तो लेकिन थोड़ी थोड़ी किया सो राहत भी किया सो बिच्चा मोड़ो कर दे है शो तो बरखा जी बच्चो कर दे है ना हुकरो ब्रेप था हुकरो बरखा बोए थे दा थोड़ कर राहत की एक सो क्षेत्र में बोए थे हल्की था हल्की बरखा के ऐसो बोए थे शो तो और मौसम में आए बदलाव थो मनु जो कि आसो चिलचिलाती गर्मी थो आराम की ऐसो मोड़ो आशो थो राज्य में बीते 24 घंटे रे दौरान कई हिस्से में बरखा तेज हवाएं और बदल के नसो छू रही थी है तापमान में गिरावट भी दर्ज हुए मौसम विभाग रे अनुसार अगर हम गल करूँ शो थो तो अधिकतर स्थान अधिकतम तापमान सो सामान्य थो 2-8 डिग्री सेल्सियस तक के आसो थल्ले लुड़ो हाशो थो तटीय श्रोताओं गल करूँ तो 25 यानी कि दत्ते 25 में ही जो प्रदेश में फिरे अक मौके के सो बरखा भूने रे संभावना के आसो दसू कर देन हालांकि मौसम विभाग री ओर थो 26 और 27 में ही जो भी प्रदेश रे कुछ हिस्से में के आसो लू चलने री भी चेतावनी जा रही वही है जबकि 28 और 29 में ही जो अक मौके फिरे के सो मौसम बदलने और कई जगह बदल बरसने भी संभावना के आसो जो कर दे हैं और फिलहाल दे है 27 तरीक 26 और 27 जो गर्मी का दौर अक मौके फिरी तो सुर ने जो बोलना है फिलहाल दुतकना कि आशो तो दुते 25 तरीक का ही ना तो दुते बो सकता फिर अक मौके बरखा री संभावना कुछ एक एरिया अंदर की आसो भुआ तो बहरहाल तो सब बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के कार्यक्रम हूँ करते हैं हिंदी अपनी गप्पा अपने वीडियो सेट में तो आइए जी वेड़ी गुंजन सो गए बने रहे तो सब जी बन रहे हैं और कार्यक्रम मन जब तू सब यू आए हूँ ने गीत सुनील राणा जी री आवाज़ में गीत था शो तो और तिन्या गीत के सो गुनगुनू रहा बहरहाल लेकर ही चल दे तू सब भी जो इस गीत तारी किनारी है ना जी ता जरूर बने रहे जुड़े रहे अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज जितना भी इस समय सो श्रोता हूँ कर दिन तैयारे चलिए लेके चलते एंजॉय करें इस प्यारे दे गीता छो वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को और कार्यक्रम इस समय तो हूँ बिल्कुल लाइव हूँ करते हैं अपने रेडियो सटमा वेडी गुंजन धर्मशाला मंज एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आइए श्रोताओं और कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ते हैं तो सब श्रोता वैसे जुड़ सकते हैं 7088879 पर कॉल करे करें नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ 7088879 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो वो गीत साझा कर सकते हैं साझा करी करी चलिए फिलहाल रह चल दिन हगो और कचो कि हर जगह पंचायती माहौल चुनाव रहा माहौल किया सो बन रहा है श्रोताओं का मैं सोचो आ है भी किया सो इस बारे में किया सो गलबात कर लेंदे ना अपने श्रोता होगी सभी मोटी गल श्रोताओं योग्यता और समझदारी भूणा किया सो तस पर्सन में तस इंसान में जाए सो मेल है जाए फीमेल है तीन में भूणा बड़ी ज़रूरी है योग्यता और समझदारी है ना शिक्षित बुआ जागरूक बुआ प्रतिनिधि इतना शिक्षित जरूर हुआ कि सरकारी योजना रे बारे सरकारी योजना रे कागजात पढ़ सका और अधिकारी रे सामने किया सो ग्रां रे गल किया सो रखे सका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये गल तो सब हूँ कर दें तो नोट जरूर करा कि प्रतिनिधि इतना शिक्षित जरूर हुआ कि सो किसी भी अधिकारी हगू को कोई भी ऑफिसर खड़ रहा कोई भी सरकारी योजना इंदिया सरकारी योजना रे कागजात पढ़ी सका और अधिकारी रे सामने किया सो ग्रां रे गल किया सो रखे सका है ना इतना कॉन्फिडेंस किया सो जरूर बुना जिंदा जो तो है चुनू कर दें जस शख्स जो तो है चुनू कर दें आवेदन लिखने में सक्षम हुआ उम्मीदवार जो बुनियादी प्रशासनिक काम और आवेदन लिखना इन्हें चिंता ताकि सो किया सो ग्रां री समस्या जो लिखित रूप थो किया सो आगे हगू किया सो बढ़ाई सका कार्यक्रम जो थोड़ा करिए और आगू बढ़ें छतो अक जो प्रतिनिधि है सो ईमानदार भूना बड़ा जरूरी है हाँ ऐसा व्यक्ति चुना जो जिसे वह पुराना रिकॉर्ड साफ बुआ और जो पैसे या निजी फायदे रहे वास्ते किया सो कम ना करता बुआ है ना उम्मीदवार ऐसा बुने चिंदा जो बिना किसी भेदभाव जाति धर्म और गुटबाजी वह ध्यान न दिया पूरे ग्रां जो किया पूरे ग्रां रे विकास मंच किया सो ध्यान दिया है ना और प्रत्येक कजो कि पंचायत है प्रत्येक बंदे की सो वोट पूरा होना था प्रत्येक बंदे रे प्रति किया सो तसी अंदर सो रुझान बुआ है ना चलिए कार्यक्रम जो आगो बढ़ेंदे इन श्रोताओं तो सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी इस समय बिल्कुल लाइव बन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट में तो ये थोड़ा करे और आगो चली लेंदे हैं और तू सब भी जो हुनंदन ये गीत बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगी रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी लेके चल दे तू सब भी हो इस गीत तारी के नारी

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और इन द श्रोता स्वोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं और कड़ी था बोल रहे हैं?
1: मैं कैंडी से कंप्यूटर वालंदी वाणी का।
0: अच्छा, क्या नाम है? वानिका नाम दस तो है अपना।
1: वर्णिका।
0: वर्णिका, क्या बात है। वर्णिका का स्कूल लगन दें तो से
1: गुरुकुल।
0: गुरुकुल स्कूल, वाव। कुंडनी क्लास में पढ़ देने
1: यूकेजी
0: में। अच्छा वर्णिका, तू सु अपने जो है गल कर दे है ना, अपनी बोली तू सु हिंदी समझ?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: क्या बात है। वर्णिका, अच्छा वर्णिका कौन देने गीत होना तो सु
1: मिठड़ी आवाज मेरी माँ सुन गा।
0: क्या बात है, क्या बात है, मिठड़ी आवाज। तुंदी मासी इंदी सीनियर थी।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी, इंदी सीनियर थी ये दीदी। अच्छा तो है। हाँ जी,
1: कंचन।
0: हाँ, कंचन मोगू। अच्छा हाँ। जी, क्या बात है। अच्छा तुमने मासी तुमने मम्मी तो मोटेन की हल्के ने दसा। हाँ जी।
1: 40।
0: अच्छा कोई प्यारी दे पोइम सुनाई दे सु सभी हो। पोइम पढ़निका, बहुत सारे श्रोता हुनु कर दें तू सु।
1: हाँ जी।
0: और तो है दस भी दिता कि तो है किसेरी भांजी ने और स्कूलर ना भी ले इता।
1: रोजी लिपस्टिक लिपस्टिक कली एयर वेरी फेयर आज अ ब्लू लवली टू थिंक दिस पॉप इज दैट यू यस ये।
0: क्या बात है। अच्छा वर्णी कहती है दो ही छोटे छोटे बच्चे भी नहीं है वीडियो मंच इतिया इति में से तो नहीं तो है कोई
1: नहीं।
0: अच्छा
1: मच्छी की लड़की है वो।
0: मच्छी की लड़की है ये, ठीक है। वर्णिका जी मिठड़ी आवाज तो सुहा है जरूर हुन ले तुम दी मासी रगी था ना जी।
1: हां जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगो तू सु की गल करी करी, बहुत ज्यादा अच्छा लगो। थैंक यू सो मच।
1: वेलकम
0: जी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रही वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अंदर बिल्कुल लाइव चल रही है। बहरहाल अगले श्रोता जो कर दें कनेक्ट। नमस्ते जी।
2: नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार,
2: ठीक ठाक
0: है? बढ़िया जी, तुम्हारा आशीर्वाद। कौन बोल रहे हैं और कड़ी तो बोल रहे हैं?
2: और शेर गांव से वृंदा किशन।
0: अच्छा स्लेट गोदाम थो किशन जी।
2: जी जी
0: किशन जी, क्या बात है। तुंदा फोन चलिया तो है पंचायत में चली छुरे तुंदे बड़े सारे प्रतिनिधि खड़ी के छुरे ता आज इंदा सवाल भी कुछ इस प्रकार रहा कि कैसा प्रतिनिधि तोपंदे जनता।
2: बढ़िया तो मेरे अच्छा काम करा।
0: अच्छा अच्छा काम
2: बोले
0: सकते इस विषय अंदर कुछ कि अस वास्ते सब वाक्य न जी जाए योल बोआ जाए दलोजी बोआ जाए बरमोर बोआ
2: जाती जाते शॉर्ट कट में तो नहीं कहना लई पीरा आहे अक्की गनार जाते प्रधान इंदा अपना अक्की गनार जैसा वाली तो इंदा प्रधान ना वोट पाए जाए कोई अच्छा कैंडिडेट त्राए प्रधान इंदा तो जेड़ा तुझे अच्छा लगा पर जताना इंदा फिर दम मारा।
0: अच्छा चलिए जी बिल्कुल इतना अपना अपना। और वैसे भी तू पता ना ये गल्ला रखी अपना वोट के सुखसी ना दस दे ये तुंदा अधिकार आ तुसु कोई फोर्स भी ना करी सकदा ये गल्ला वास्ते।
2: ना ना ता आऊं ये ना बोलू करदा कि आ क्या बंदा तुसु बहाना करे आओ बंदा कि ग्रांड प्रधान जो सो जताना फिर दम मारा ना।
0: ठीक है जी इरा जसेरे मथे रास्ते ले
2: लिख रो बोला कि वोट पा ताहे ता सचिन जी देंदा तू ना हक गया भाई सचिन ते किंदा ते जेड़ा फिर दमरा पदा तिया वोट पा ना सुन कर सकदे कसी एक ना कर सकदे।
0: बिल्कुल बिल्कुल जसेरे मथे मा तिल वास्ते लिख लिख रो दस जितना जी
2: जी जी
0: है ना।
2: और केरा मथा रात तिरक लिख रो लाते सिगना क्या से लिख दमरा बोला ता योली दा बोला
0: आखी गल
2: ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰੇ ਕਦਕੜ ਖੇੜ ਕਦਾਬ ਕਾਟੀ ਉਹ ਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੇਣ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ
2: ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਣਨਾ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ
0: ਹਾਂ ਸਭ ਵੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂ ਸਭ
2: ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ 90 90 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੀਆ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਚੜੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ
0: वोट पाने। हाँ सब भी मोटी गल और ये बड़े अच्छे और बड़े मोटे गल है मतलब खरा लगू करता शायद इन भी कि पहली बार के असो इलेक्शन बच्चू करते पहली बार के असो पंचायत बनू करते और पंचायत में क्या क्या मूल मूलभूत सुविधाएं बुनी ना सो मूलनी ना सो इंदे प्रधान और उप प्रधान पर के असो बड़ा कुछ निर्भर करता
2: जी जी
0: कि सो क्या क्या सुख सुविधा किया सो लेकर इच्छु कर देने क्या कुछ किया सो पंचायत में करू कर देन पंचायत रा अपना बजट किया सो कितना कर या खैर ये तो पहली बार बनू कर दिया बजट बनाने वास्ते तो बड़ा जोर लगना ही थी वास्ते था बड़ी ईमानदारी भी लगनी और पर चलिए एर दिन क्या कुछ बन दिन और आऊँ तो बलता जड़ी अरे भाई प्रधान बना सो ये इना बना कि अपने खास कर आऊँ टिकट चतैड़ या योल या सिलड़ गदामरी गल ता करो कर दोतों को जो कि पहली बार के आसो बुचू कर दे इलेक्शन इतिहास में गया सो पन्ने में लिखी ना है कि पहली बार प्रधान कौन तो योल रहा है ना।
2: ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਕਲਾ ਵਗੈਰਾ ਰੁਕੂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੋਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸੋ ਵੀ ਬਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਬਸ विकास री और किया सो ये योल स्लेड गोदाम चो लेख रे गच्छा उन्नति री और किया सो योल स्लेड गोदाम चो लेख रे गा गच्छा और कसी भी मनु रह किया सो कम इनकार ना करा ये ना बो ना कि पहले 5 दिन इंजा हाथ जोड़ ला और अगले 5 साल आए हाथ जोड़ते रहन फिर।
2: हाँ जी हाँ जी सही गल बोले ये ना कि हाँ अच्छा हाथ जोड़ कर दिया पैरा बंदू कर दिया कि हाँ ठीक है जी अच्छी वोट पाए बाद प्यारा पैर बन गया प्यारा किसी का नमस्कार करना तो कोई फायदा नहीं ना
0: कोई फायदा ना कि स्टैंप
2: भी छो अच्छा काम करने जरूरी नहीं क्या सवाल दिए प्रधान पंच बना जो अच्छा काम कर ला दिया अगली बार फिर बनेगा ना कोई कि मनु जनता जो है ना आजकल और लिख रहे हो सब कुछ जानते ऐसी गल नहीं कि ना जानता कुछ भी
0: अगली बारी भूल सकते तिया थो बैटर भी चली इन मनो कोई जरूरी थोड़ी सो बैटर ने तिया थो बैटर भी के सो मैदान में इस सकते
2: चल बाकी गल है अच्छा कोई अच्छा काम कर ला सो अगली बारी खड़ी सकता तो तिया मनु वोट पाने भी जीती सकता कोई ऐसे ये नहीं कि हाँ ना पाने दिए वोट तो अच्छा काम कर ले आगू बारी बनते थे कई बारी बनते दूसरे त्रा त्रा बारी बनते बनते प्रधान पंच
0: जी जी बिल्कुल
2: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी किशन जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले तो है वेड़ी गुंजन में चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले नमस्ते जी। FM 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है चलिए चल दे और अगले श्रोता जो कनेक्ट कर दे नमस्ते जी।
3: नमस्कार महाराज जी।
0: महाराज नमस्ते नमस्ते क्या हाल चाल महाराज जी।
3: बिल्कुल ठीक ठाक उस मालिक ने मौज है जी आजकल लग दे।
0: अच्छा क्या बात है और कर करे लगुरन
3: बस आज मैं आया तो मैं रेडियो ऑन करो ता गप्पा हूं करदा हमें लोग फोन कर लंदा।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल जी तुंदा सभी रा अधिकार है तुंदा सभी रा कार्यक्रम है तुंदा सभी रा कार्यक्रम है तुंदा सभी रा अधिकार
3: जी महाराज
0: जी। और नोयता जी
3: 9 तारीख तो कोई कुछ न थी जनाब, सब ये है कि आजकल गर्मी ज्यादा है।
0: हाँ जी
3: बंदे सुख थे दुख था जिंदगी में इंदे रंदे
0: इंदे रंदे बिल्कुल इंदे रंदे
3: ये गर्मी के असम ये सुख ही समझे या।
0: हाँ, बिल्कुल
3: कई चीज जासी तिन्यो गर्मी के इंदे कई चीज जासी तिन्यो ठंड के इंदे
0: ठंड से इंदे बिल्कुल बिल्कुल।
3: अबे प्रधान नहीं गप लाओ जिन्हें प्रधान बिल्कुल जिन्हें सुख है प्रधान के बिल्कुल अच्छा बुना चिंदा
0: जी जी जनाब।
3: अच्छा दूसरी गल है ये प्रधान है कई ऐसे भी है जनाब के प्रधान अच्छे से अच्छे प्रधान है
0: बिल्कुल।
3: अच्छा प्रधान है कि किस प्रधान हक तो सो बनाना चाहिए जो शराब न पींदा हुआ।
0: आहा क्या बात है
3: बिल्कुल महाराज बिल्कुल शराब न पींदा हुआ तो अब सो तह जगह शराब गम दबे तो कई मन वैसे बंदे ना पींदा हूं तो सो है बंदे शराब पींदा है प्रधान आता है बंदे ना पींदा तो फिर बेइज्जती होंगी है
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: कह जगह तो शुगाना हमने चींदा तो उरी जगह चुनना चींदी ताड़ी मतलब शराबी बिल्कुल न बोन
0: जी।
3: हाँ जी और के जितने भी ने प्रधान से अच्छे तो अच्छे ने खरे तो खरे प्रधान है अच्छे तो अच्छे प्रधान से ही होना चींदे कि सारे गरीबा दी भी होना तो मीरा दी भी होना
0: होना होना बिल्कुल।
3: अच्छा कम सारे दे करने
0: बिल्कुल
3: कई ऐसे होंगे जो गरीबा की खुश लेंदे रह रहा है दिन अगले साल लाइ तस गंदे गंदे सो बेचार गरीब रे गंदे तस उच्चा मन लाभ उठाई गंदा
0: ये तो ठीक बोल रहे हो जी।
3: हाँ जी
0: सही गल है 16 ने गल की है तुंदे सच।
3: हाँ जी हाँ जी और जनाब मुझे एक भजन सुनाई दिया जी हिट्टा बाबा जी बैठे पीछे संगत सारी जी
0: जी जी कुंडला आख मौके फेरी रिपीट कर ले 10 लाख मौके फेरी जी
3: आगे ये सीटा बाबा जी बैठे पीछे संगत सारी जी।
0: चलिए ठीक है जी एक गीत सु है जरूर सुन ले।
3: ठीक है महाराज जी
0: ठीक है महाराज जी धन्यवाद नमस्ते
3: नमस्ते महाराज
0: जी। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में। चलिए जी ता परवीन कपूर री आवाज में और इंदे सीनियर थी ये दीदी यारी आवाज़ में के प्यारे दे गीत के अशो तो सो है ज़रूर तू सब भी जो भी किया सो हूँ दे हिन बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

0: छो तो समेरा थोड़ा करे अभाबा फरमाइशा और बिहिन और कंचन मोगुआ बल्लू करता माफ करा वे कंचन मोगू नहीं ना वे कंचन कपूर री आवाज में और परवीन कपूर री आवाज में तो है प्यारे दे गीत किया श्रोताओं सो हुनो हा चलिए चल दे स्लेट गोदाम तो फरमाइश थे कोई प्यारे दे आप पुराना गीत किया सो ये हुना चंदन इन दे अक्षोदा पे कॉल तो करू कर दे हिन लेकिन श्रोता तो थोड़ा करे माफी समेरा बाबा हेलो
1: हाँ जी हाँ जी सर
0: हेलो
1: हाँ जी हाँ जी
0: नमस्ते जी रेडियो सेट रही आवाज धीमी कर दिया
1: अच्छा जी
0: जी कौन बलुंदन और कड़ी था बलुंदन
1: हाँ स्लेट गुदाम हूँ बलुंदन भाई
0: स्लेट गुदाम था
1: हाँ जी जी
0: क्या ना जी तुम था
1: मैं ना रमेश चंद जी
0: जी रमेश चंद जी क्या बलना चंद हैं
1: हाँ बलने वाले मगर गाना सुना जो
0: चलिए ठीक है
1: मगड़ू लिया लंबा छेड़ा
0: ठीक है जी मगड़ू छेड़ तो अबे 5 बजे बाद ही तो चली समय पूछिगो
1: लाइ नहीं है ना जरा ये
0: माफ करे जी 4 मिनट बची दो फरमाइशन दोते जरूर तो है असो की जुड़े चूर था 5 जरूर तुम दी फरमाइश पूरी कर ले
1: कोई गल कोई
0: ठीक है जी नमस्ते चलिए चल देन छो तो दो बॉल हुन लेन देन ठेरे इसे गीत तरह

0: आशो तो समय रहा पता नहीं चलता, समय रहा थोड़ा करे अवाब आ गंदे गंदे आके लास्ट भजना रही फरमाइश सो भी दुई बोल जरूर होना ने। हम सचिन कपूर फिलहाल तुस उतो ले लेनो इजाजत, गंदे गंदे बोलना चाहनो माता पिता रही सेवा जरूर करा, सियाने भी इज्जत सियाने रहा मान सम्मान किए सो जरूर करा, और सोगे सोगे श्रोतो सियाने होगी जरूर प्यार भाव मजाक भी किया सो जरूर रखा श्रोतो है ना, सियाने खुश हो चुके इंदे फिलहाल प्रकृति जो अच्छा साफ सुथरा जरूर रखा। इन शब्द था उन सचिन कपूर लेने इजाजत मूल दे फिरी चाहिए था वाट नमस्ते धर्मशाला।
1: जहाज बनाया उड़ने कर लो तैयारी जी अगली।

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला से आज का ये खास समाचार बुलेटिन आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम फिर से बढ़े, 10 दिन में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अमेरिका ला सकता है भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता। इसरो की मदद से खोजी जाएगी सरस्वती की धारा। पंचायती चुनाव के लिए आज थम गया प्रचार। पंजाब में हिमाचल की तर्ज पर प्रवेश शुल्क लगाने का प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों से भी कम समय में शनिवार को तीसरी बार बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे लीटर जबकि डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निकट भविष्य में अमेरिका की यात्रा का न्योता दिया। दोनों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के दौरान रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने नहीं देगा और इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ऊर्जा उत्पादों में भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने की क्षमता है। वैदिक सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड इसरो के साथ मिलकर गुजरात में एक परियोजना की शुरुआत करेगा। सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच की अध्यक्षता में इसरो के साथ अहमदाबाद में आयोजित हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक में सरस्वती नदी परियोजना को गुजरात में गति देने, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के मतदान से पहले आज रविवार को चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने पंचायती राज संस्थाओं के मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं और प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 3 मई को आयोजित रद्द हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए रिफंड सुविधा शुरू कर दी है। छात्र अब परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण जमा कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार नीट यूजी 2026 पंजीकरण पोर्टल पर रिफंड का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे बड़े नॉकआउट मुकाबले यानी क्वालिफायर 1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगामी 26 मई को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी और हारने वाली टीम को एक और मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम को प्रदेश भर में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। राज्य में अब तक लगभग 2 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा इन लोगों को नशीले एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, आपदा प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। शारीरिक शिक्षा डिग्री धारकों के लिए राहत भरी खबर है। जो बैचवाइज आधार पर नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, शिक्षा विभाग जून में बैचवाइज आधार पर शारीरिक शिक्षकों के 355 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में 3 और 4 जून को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेशों के अनुसार जिला स्तर पर काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में टोल टैक्स की वसूली और इसके प्रबंधन को लेकर कानूनी प्रस्ताव पंजाब सरकार को सौंपा गया है। ये प्रस्ताव पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता उतांश मोलगा ने विभिन्न किसान यूनियनों और सामाजिक संगठनों के अनुरोध पर तैयार किया है। हिमाचल सरकार के वाहनों पर 5,000 रुपये प्रवेश शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। उतांश मोलगा ने कहा कि 13 अप्रैल 2026 को पंजाब सरकार से बैठक हुई थी। इस कानूनी मसौदे का उद्देश्य पंजाब में टोल संग्रह की व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश के टोल एक्ट 1975 की तर्ज पर आधुनिक और प्रभावी बनाना है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीक के अनुरूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। कक्षा 6 से जमा 2 तक AI को कौशल विषय के रूप में आरंभ करने की तैयारी चल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना में इंटेल इंडिया को ज्ञान सहयोगी के रूप में जोड़ा है। IGMC अस्पताल शिमला ने रोबोटिक सर्जरी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि पहली बार बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित एक मरीज को रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन किया। नेपाली मूल के 50 वर्षीय व्यक्ति की बड़ी आंत के सबसे निचले हिस्से यानी रेक्टम में कैंसर था। हिमाचल में 3 माह के भीतर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार में आई इस तेजी को पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर यह असर मुख्य रूप से फरवरी से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का पहला असर मालभाड़े में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया। आपूर्ति बाधित होने के बाद से ही जमीनी स्तर पर रोजमर्रा की चीजों के रेट तेजी से चढ़ने लगे हैं। डिजिटल युग में लगातार
1: मेरे प्यारे दोस्तों 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम
0: इस योजना का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम के साथ आम लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना है। योजना के तहत तकनीकी रूप से दक्ष और जिम्मेदार युवाओं को साइबर मित्र के रूप में जोड़ा जाएगा। ये युवा हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर सेल के साथ मिलकर साइबर अपराधों की रोकथाम जांच में सहयोग तथा पीड़ितों की सहायता से जुड़े कार्यों में भागीदारी निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनावों के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने नई रणनीति लागू की है। राज्य के जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगी है उन्हें अगले एक सप्ताह तक सामान्य अवकाश नहीं दिया जाएगा, ताकि स्कूलों में स्टाफ की उपलब्धता बनी रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हिमाचल में हरित परिवहन की ओर बढ़ते कदमों को पहाड़ों की कठिन चढ़ाइयों ने शुरुआती झटका दे दिया है। HRTC की नई Type 1 इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल दुर्गम ग्रामीण रूटों पर नहीं दौड़ेंगी। ट्रायल के दौरान सामने आया कि तीखी चढ़ाई, सकरी सड़कों और खस्ताहाल मार्गों पर इन बसों को संचालन में दिक्कत आ रही है। इसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने फैसला लिया कि इन बसों को केवल आसान और समतल रूटों पर ही चलाया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों को 6,000 नए पद आया के मिलेंगे। सरकार ने 6,000 नए पदों पर आया की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी है। इस बाबत समग्र शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सरकारी स्कूलों में अब 10,000 से ज्यादा पदों पर आया की भर्ती होगी। 6,000 पदों पर पहले ही आया की नियुक्ति का प्रोसेस चला हुआ है। बड़ी बात यह है कि आउटसोर्स के आधार पर होने वाली इस भर्ती में पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों की लोकल महिलाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के लिए अलग से आया मिल जाएगी। इसी के साथ आज का ये मुख्य समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: के साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल जो है वो ज़रूर रख रहे होंगे। श्रोताओं देखिए, कहते हैं कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम कमा भी सकते हैं, दोबारा जोड़ भी सकते हैं, चीज़ों को बना भी सकते हैं। रिश्ते अगर कहीं ना कहीं बिगड़ जाएं तो उन्हें भी हम बनाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सेहत अगर एक बार बिगड़ना शुरू हो जाए तो वो फिर स्टेबल होना जो है वो बड़ा मुश्किल सा, टफ सा टास्क जो है वो इंसान के लिए रहता है। सो, अपनी सेहत पर ख़ास ख्याल रखिए, अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये साथ है तभी आप सब कुछ हैं। और ये अगर श्रोताओं मैं कहता हूँ, 2 महीने भी अगर बेड पर लग गए ना तो आपकी राम सलाम सब छूट जाएगी, सब आपको भूल जाएंगे बहुत जल्द। दौर की बात होती है श्रोताओं, इंसान अपने अपने दौर में जो है वो सब लोग जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं और अपना दौर जो है वो बनाते हैं, लेकिन इस दौर के बीच में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, मैं हूँ सचिन कपूर, 8 बजे तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, हम आपके साथ और आप हमारे साथ जो है वो बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और कार्यक्रम में श्रोताओं बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत जो है वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, और जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले हम गीत से पहले जानकारियों का पिटारा जो खुलता है वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाते हैं और वो पहुंचाएंगे। बहरहाल, इस समय जो है वो टेम्परेचर की बात करते हैं श्रोताओं, तो 22 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर है। नमी की बात की जाए तो 60% के आसपास नमी इस समय बता रहे हैं कि धर्मशाला में है। आज मौसम सही है, थोड़ा सा धूप, थोड़े से छांव, और कल भी कुछ इस प्रकार का मौसम ही रहने वाला है श्रोताओं। तो आइए जी, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ, और आगाज़ के बाद श्रोताओं फिर आपको ले चलेंगे हम प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे से गीतों की ओर और जानकारियों की ओर तो लेकर ही चलेंगे। बहरहाल, सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, और कार्यक्रम में अब आपको लेके चलते हैं आज के विचार की ओर। जी बिल्कुल श्रोतो, मुझे लगता है विचार तो चलिए बात की बात है, लेकिन पहले की बात है क्योंकि हमने कहा चलते हैं आज के विचार की ओर। तो रुकावट आती है सफलता की राह में, रुकावट आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। शो तो हाँ वाकई में ना ये सच्चाई है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। शो तो बातों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होता। श्रोताओं जान काम में होनी चाहिए, आपको काम करके दिखाना आना चाहिए और तभी आपको मंजिल जो है वो मिल सकती है। श्रोतो है ना, रुकावटें बेशक आती हैं सफलता की राहों में श्रोतो, लेकिन मंजिल तो वहीं मिलती है और उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जो है श्रोतो वो जान होती है। बहरहाल आप सभी बने हुए आर जे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द तो छुपा कर रखा है, प्यारा सा गीत है। आप सभी के दिल में भी कभी न कभी कोई ना कोई दर्द जो है वो ज़रूर मिला होगा, छुपा होगा, लेकिन बहरहाल हम नहीं पूछेंगे, हम आपको लेके चलेंगे सीधा इस प्यारे से गीत

शो तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। और ये फिल्म भी बहुत कमाल है, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। आमिर खान और कृष्णा जी ने जो इसमें कसम से बहुत ही कमाल सी ये फिल्म है शतो। और वाकई में इस गीत को जब जब सुनते हैं तब तब रोना आ जाता है, और वो फिल्म का सारा दृश्य जो है वो सामने आ जाता है शतो, है ना। होता है कभी कभी कुछ यादें आपकी जो है वो किसी न किसी गीत के साथ जो है वो जुड़ी है, तो मेरी भी बहुत सी यादें जो है वो इस गीत के साथ जुड़ी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं KV योल में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय योल कैंट स्कूल में जो हूँ मैं जो हूँ वो पढ़ा हूँ, वहाँ मैंने स्टडी की है। तो हम बहुत से दोस्त जो है वो साथ होते थे, और इस गीत को ना जब भी क्लास ऑफ होती थी या इंटरवल का टाइम होता था तो इस गीत को हम चार पांच दोस्त मिलकर जो है वो बहुत गाते थे। अच्छा, जैसे ही टीचर आते थे हम चुप हो जाते थे, फिर उसके बाद जैसे ही टीचर गया पीरियड ऑफ हुआ वैसे ही हम गाना शुरू हो जाए। तो हमारी किसी ने ना शिकायत लगा दी, हमारी ही क्लास के किसी ने है ना, किसी लड़की ने शिकायत लगा दी कि सर आप चाहते हैं मैम आप चाहते हैं तो ये पीछे से इस तरह से गाने जो है वो गाते हैं। और एक हमारा एक दोस्त होता था, मुझे आज भी याद है, वो न जाने कहाँ है। देखिए कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि कुछ समय के लिए वो आपके बहुत ख़ास होते हैं, बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर एकदम से जब वो माहौल बदल जाता है, जब वो इन्वायरमेंट बदल जाता है, वो जगह बदल जाती है, तो उन दोस्तों का पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गए हैं। तो उनका नाम तेज प्रताप है, जो कि यूपी के रहने वाले थे, और अब मुझे पता ये लगा था कुछ साल पहले 2000, मैं आपसे 12 की बात कर रहा हूँ इस समय, कि वो 2018-19 में शायद मिलिट्री पुलिस में हो गए हैं, है ना, फ़ौज में हो चुके हैं, जो फ़ौज की पुलिस होती है उसमें हो गए। तो वो ढोलकी जो है वो बड़ी अच्छी प्ले करते थे उस समय, तो हम तो ऐसे ही गाते थे इस गीत को, है ना, शोर के लिए गाते थे हम कि शोर मचा रहे हैं क्लास में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस गीत को सुना और उन्हें लगा कि लड़के तो वाकई में ही मजा बेशक शोर के लिए गा रहे हैं लेकिन गा तो अच्छा रहे हैं ये सभी, है ना। उन्होंने एनुअल फंक्शन के दिन जो है वो हमें बता दिया टीचर का कि ये ऐसे ऐसे गीत गाते हैं और इनसे एनुअल फंक्शन के दिन जो है वो गीत गाना है। वो प्रैक्टिस टाइम भी होता था, हमें वो प्रैक्टिस टाइम लास्ट के 2 दिन दिया गया, कहते हैं आपकी यही पनिशमेंट है कि आपने पूरा साल शोर किया है तो लास्ट के 2 दिन आपको प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तो थी हमारी, तो अच्छा गया, बढ़िया गया, हम सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बहुत सी यादें होती है ना शो, तो वो ज़िंदगी जो है वो वापस नहीं आती है, वो दौर जो है वो वापस नहीं आता है, स्कूल लाइफ जो है वो वापस नहीं आती है शो, तो वो कॉलेज लाइफ वापस नहीं आता है। मुझे लगता है स्कूल लाइफ बहुत बेस्ट बेटर होती है, आपकी दुनिया बहुत छोटी होती है लेकिन उसमें बहुत सुकून होता है। फिलहाल चलिए, यादें तो यादें होती हैं ना, यादों को सिर्फ हम याद ही कर सकते हैं। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहेगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोतो आइए, वक्त हुआ है कार्यक्रम अब छोटे से अंतराल का।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

शतगुंज अपनेपन की तो है ही और वो हमेशा रहेगी। और मुझे लगता है ये गुंज अपनेपन की हर रिश्ते में भी होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो चौकी सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। शुद्ध होप सो आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ ना श्रोतों की खुश रहना जो है वो बहुत ज़्यादा, अत्यंत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है हम सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो चलिए जनाब, लेके चलते हैं आप सभी को अब जानकारियों की ओर। हिमाचल प्रदेश में मई महीने के बीच में भी जो है वो बारिश हो रही है श्रोताओं। अच्छी बात भी है क्योंकि भीषण गर्मी से लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, थोड़ी सी राहत जो है वो लोगों को ज़रूर मिली है श्रोताओं। इवन कि हम सभी ने देखा कि शनिवार को कई क्षेत्रों में जो है वो हल्की से तेज़ बारिश देखने को भी मिली है। वही मौसम में आए बदलाव से लोगों को भी चिलचिलाती गर्मी से जो है वो आराम मिला है श्रोताओं। राज्य के बीते 48 घंटों के दौरान कई हिस्सों में बारिश, तेज़ हवाएँ और बादल छाए रहने का जो है वो अनुमान है। तापमान में गिरावट भी जो है वो श्रोताओं दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो अधिकतर स्थानों के अधिकतम तापमान सामान्य में से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चले गए हैं। वहीं 25 तारीख की मैं बात करूं, यानी कि कल की मैं बात करूं, तो 25 को प्रदेश में फिर से बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। हालाँकि मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने की भी चेतावनी जो है श्रोताओं वो जारी की है, जबकि 28 और 29 मई को एक बार फिर मौसम बदलने और कई जगह बादल बरसने की संभावना जो है वो जताई गई है श्रोताओं। तो चलिए कहाँ कितना तापमान है ये भी आप तक हम जरूर हम बताएंगे श्रोताओं। सबसे पहले तो ये जानकारी आप तक पहुंची, हल्की गिरावट कहाँ आई है, धर्मशाला में 18.8 इस समय जो है वो बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जो है वो तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है श्रोताओं। तो धर्मशाला में 18.8 वो शनिवार को थी श्रोताओं, है ना। तो चलिए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारियों के साथ आप श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने आज यह बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार व अन्य सभी वाजपात्रित अधिकारी और पात्र वाजपात्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई थी। श्रोताओं, ये परीक्षाएं अब पूर्व में निर्धारित तिथि 28 अप्रैल से 7 मई 2026 के स्थान पर 18 जून से 27 जून 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन जो है वो संशोधित समय सारणी के अनुसार ही राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में किया जाएगा। श्रोताओं, इसके अतिरिक्त पेपर संख्या एक वित्तीय प्रशासन में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधाओं के लिए इस पेपर का आयोजन जो है वह राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी केंद्र में 18 जून 2026 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा की संशोधित समय सारणी को हिप्पा की वेबसाइट www.hippashimla.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी श्रोताओं, जानकारियों का पिटारा आप सभी यूँ ही खुलता देखेंगे आपके अपने रेडियो सेट पर। कोई मिल गया गीत आप सभी ने जो है वो बहुत बखूबी सुना श्रोताओं, और आप सभी को भी तो कोई ना कोई कभी ना कभी ज़रूर मिला होगा। क्या बात क्या बात क्या बात, मिला होगा ना श्रोताओं। मैं कह रहा था ना कि ज़िंदगी के वो पल, वो दौर, वो लम्हे, वो समय वापस नहीं आता, वो कभी नहीं आता। आप करोड़ों खर्चों, लाखों खर्चों, वो कभी नहीं आएगा। सो समय की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है पैसे के आगे। तो चलिए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।

हाँ देखिए ना, दिल का रिश्ता मैं कह रहा हूँ ना कि प्यारा तो होगा ही, और जानता ये जहान सारा, ये सारा जहान जानता है श्रोतों की हमारा और आपका दिल का रिश्ता भी बहुत प्यारा है। वेड़ी गुंजन के बहुत प्यारे प्यारे श्रोता हैं और अक्सर हमें फीडबैक भी जो है वो मिलती रहती है, अक्सर हमारे साथ जो है वो जुड़े रहते हैं वेड़ी गुंजन के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी श्रोतागण हैं। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। तो चलिए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। नशा खत्म करने को 5 को दौड़ेगा हिमाचल। जी बिल्कुल, शिमला में होगी एंटी चिट्टा एवं क्लीन एंटी चिट्टा को लेकर जो है वो सरकार श्रोतों वाकई में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को विज और एंटी चिट्टा एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिनी मैराथन 2026 का आयोजन जो है वो किया जाएगा। मैराथन का कार्यक्रम में मिनी मैराथन 10 किलोमीटर, ड्रीम रन 3 किलोमीटर होगी श्रोतों। विज पर रिपोर्टिंग का समय 5 जून को सुबह 6 बजे और फ्लैग ऑफ सुबह 6:15 पर जो है वो किया जाएगा। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे विशेषकर चिट्टे के खिलाफ एकजुट करना तथा स्वच्छ पर्यावरण, फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति प्रेरित

करना है। हर वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश को नशा मुक्त समाज के अभियान से जोड़ा है। श्रोतों, पुलिस विभाग का कहना है कि इस अभियान से युवाओं के भविष्य की सुरक्षा व समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सामूहिक प्रयास है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए समय वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा बहुत प्यारा गीत है, शो तो मुझे बहुत पसंद है, मे भी आपको भी होगा।

0: तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में श्रोताओं समाचारों।
1: भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोवाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोता FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आरजे सचिन कपूर के साथ बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का, सभी श्रोताओं का। आई श्रोताओं, लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की। और हिमाचल में पेट्रोल 100 से पार है, केंद्र सरकार ने बढ़ाए दाम, तो शिमला में लगी सेंचुरी, डीजल भी महंगा हुआ श्रोताओं। जी बिल्कुल, पेट्रोल 87 पैसे जो है वो महंगा हुआ है फिर से। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ श्रोताओं की लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ रही है, और उस साइड भी ईरान पर नए हमले की तैयारी जो है वो अमेरिका कर रहा है। ये लगातार चीज़ें जो है वो इनबैलेंस हो रही है, लगातार चीज़ें ख़राब हो रही है श्रोताओं। तो हम सभी को जो है वो सतर्क रहना है, पेट्रोल का कम यूज़ करना है, इन चीज़ों के बारे में खास ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है श्रोताओं। बहरहाल पूरी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन लेते हैं इस गीत का आनंद।

हाँ बिल्कुल नशो, तो अगर तुम साथ हो तो साथ जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे आपके पेरेंट का है, आपके दोस्त का है, फ्रेंडशिप में है, या पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आप सभी सुन रहे हैं FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं श्रोताओं इस जानकारी की ओर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो श्रोताओं लगातार जो है इजाफा हो रहा है, लगातार कीमतें जो है वो बढ़ रही है, बढ़ोतरी की जा रही है श्रोताओं। हिमाचल प्रदेश संघ देश भर में 9 दिनों के भीतर तीसरी बार जो है वो तेल के दाम बढ़ाए गए हैं श्रोताओं। इस बार पेट्रोल पर 87 पैसे और डीजल पर 51 माफ़ करें 90 पैसे जो है वो प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है श्रोताओं। नई दरें लागू होने के बाद राजधानी शिमला में पेट्रोल 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है श्रोताओं। अब शिमला में पेट्रोल 100.1 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.17 रुपये लीटर जो है वो बिक रहा है। ये 9 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी है श्रोताओं। इससे पहले कुछ दिन पहले जो

ये ज़रूरी भी है चिंता शतों, क्योंकि लगातार जो है वो दाम बढ़ रहे हैं, जो कि आम जन के लिए मुश्किल है ना शतो। हमारे और आपके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, चीज़ें बैलेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाती हैं, सारी चीज़ें जो है वो मुश्किल तो है शतो, है ना। तो बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोतों लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त आप सभी सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आज पहली बार दिल की बात की है। बहुत प्यारा से गीत हम सभी ने सुना वीडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए शोधो, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक अंतराल का, छोटे से अंतराल का, और वापस मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चौसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम घबराए
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

चलिए, श्रोतो अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं श्रोताओं, और लेके चलते हैं आप सभी को जी बिल्कुल अगली जानकारी की और जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही खुलता रहेगा। गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी यूं ही खुलता रहेगा। श्रोताओं आप बने हुए हैं हमारे साथ वेडी गुंजन की गूंज के साथ। तो फिलहाल तो आप सभी को यही जानकारी देना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम यूज़ जो है वो ज़रूर कीजिए, गैस का कम उपयोग जो है वो ज़रूर कीजिए। हालांकि भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी, पीएम मोदी से मिले मार्क रूबिया व्हाइट हाउस आने का न्योता जो है वो दिया है। जी बिल्कुल श्रोताओं, लेकिन फिलहाल क्या होता क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। देश के युवाओं को रोज़गार के नए अवसर देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम जो है वो उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज़गार मेला के 19वें संस्करण के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्त पात्र वितरित किए। श्रोतों इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत की युवा अवधि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रही है। रोजगार मेला युवाओं को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा वेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत।

ये वाकई में ही ना, मैं भी मिलना चाहता हूँ। किसने शुरू की ये और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से महसूस हुआ कि इस तरह से मोहब्बत जो है वो हो सकती है? और आपके आप बताइए कि आपको मोहब्बत के बारे में कितना पता है, या आप मोहब्बत के बारे में जो है वो क्या जानते हैं? आप मोहब्बत को कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं, कैसे महसूस करते हैं? ज़रूर अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा। मोहब्बत है क्या चीज़, और किसने शुरू की, किसने बनाई? और मोहब्बत मुझे लगता नहीं कि कभी ख़त्म होगी, और मोहब्बत दिलों में होनी भी चाहिए। शो तो है ना जी, आप सभी बने हुए इस समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ एक कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो शो तो वक्त हो गया है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचार। कृपया विलय की प्रतीक्षा करें और बने रहें, जुड़े रहें आपके वेड़ी गुंजन के साथ।

0: पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा। 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। और भाजपा ने 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से किया मुक्त। जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। पहले चरण में प्रदेश में 1293 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8,198 मतदान दल गठित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और आज ही वे अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए चंबा जिले की 118, ऊना जिले की 86, हमीरपुर जिले में 83, कुल्लू जिले में 84 जबकि लाहौल स्पीति जिले में 12 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में बिलासपुर जिले की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। चंबा जिले के जनजातीय पांगी उपमंडल की 19 पंचायतों में 26 और 28 मई को मतदान होना है। इन चुनावों के लिए पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने पोलिंग टीमों को चुनाव सामग्री के साथ आज संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया। पांगी उपमंडल में कुल 52 पोलिंग टीमें विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए भेजी गई हैं जबकि 10 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। आवासीय आयुक्त ने मतदान दलों को आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार नगर पंचायत व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा है कि प्रशासनिक व राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से जनादेश को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं जो लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कल 25 मई को शिमला स्थित लोक भवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी नेताओं के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान हुई मंत्रिमंडल बैठक और चुनाव प्रभावित करने वाले फैसलों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। वे आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जिला परिषद वार्डों से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान मिल रहे जनसमर्थन से ये स्पष्ट है कि पूरे हमीरपुर जिले में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस की नाकामियों और जन विरोधी रवैये के खिलाफ लोगों में भारी रोष है जिसका नतीजा चुनावों में साफ दिखेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में एक निजी रेडियो चैनल द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए इसे समाज और नैतिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया नशा मुक्ति अभियान में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। प्रदेश भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है। ये कार्रवाई जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की गई है। भाजपा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संकेत देने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से संगठन की विचारधारा, अनुशासन व अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में कार्य करने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत आज बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण बेटियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। हमीरपुर जिले में भी 20 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज विवेक कालिया ने बताया कि मानवता के कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मिशन द्वारा समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
2: मिशन का संदेश है कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, ये इंसान को एक जीवन दान दे, इंसान को एक सुरक्षा प्रदान करे। इसी मानवता के भाव को लेकर ये मिशन के अनुयायी यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं और बरसों बरस से ये रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। अभी तक कुल 7500 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे भारत वर्ष में लग चुके हैं और तकरीबन 15 लाख यूनिट से ऊपर का रक्तदान मिशन द्वारा किया जा चुका है, जो एक मानवता के लिए मिशन की तरफ से सराहनीय योगदान है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वर्ष 2019 में भी लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 जून से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय संजौली में किया जाएगा। परीक्षा की संशोधित समय सारिणी डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा। 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। और भाजपा ने 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से किया मुक्त। जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेणी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे, क्योंकि अब वक्त हो गया है श्रोतों जाने का, कार्यक्रम से जाने का वक्त हो चुका है। वैसे हम इधर ही हैं, अभी काफ़ी टाइम तक इधर ही रहेंगे हम, फिलहाल वक्त हुआ है जाने का। तो आप सभी से लेते हैं इजाज़त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, प्रकृति का ख्याल जो है वो ज़रूर रखिए, और दूसरों को बुरा मत बोलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों का सहयोग जो है वो करते रहिए, अपने कर्मों को अच्छा ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यानी सचिन कपूर लेता हूँ आपसे जुदा। अलविदा, नमस्ते धर्मशाला।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर। सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 저스의
1: 쇼카이나
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: Chelsea?
1: चौकन्ना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यू तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकलें तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: हे, तुम घबराए
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है?

0: दस मिनट दीजिए।
1: कौन था?
0: बैंक। केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
0: स्मार्ट गर्ल।
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा,
2: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
4: शादी से पहले वाली
3: हाँ?
4: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इतना सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: जैसे
1: क्या करना,
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

दूरदर्शन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।